ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 10वीं तिथि तदनुसार 1 सितंबर सन 2026 इस समय सुबह के 8:54 और 30 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना में 9:20 पर सुबह सुनेंगे रेखा भारद्वाज और स्वानी शिंदे के गाए कुछ भक्ति गीत।

असाध्य रोगों का होम्योपैथिक उपचार, इस विषय पर डॉक्टर श्रीराम शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत आप सुनेंगे। कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत सुबह 9:40 पर। फिल्म संगीत में आप सुनेंगे सुबह 10 बजे गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर गाने नए तराने नए। इसके साथ ही शाम 6:05 पर भी फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा।

युवाणी कार्यक्रम में शाम 5 बजे युवा दोस्त सुनेंगे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 5:30 पर बहनों का कार्यक्रम होगा महिला जगत। शाम 6:20 होगा माटी के स्वर कार्यक्रम और शाम 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से रिले कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 बजे आप सुनेंगे एल्बम सॉन्ग्स और 8:30 पर रात को सुनाया जाएगा लोक संगीत के कार्यक्रम घूमर में कुछ लोक गीत। रात 9 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत के प्रोग्राम में कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80,000 बैरल प्रतिदिन किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये शिखर

0: मिलन संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। एससीओ बैठक में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: देश भर में आज से स्वच्छता पखवाड़ा 2026 शुरू हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग होने वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उर्वरक विभाग के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी अभियान का लक्ष्य भौतिक और डिजिटल दोनों कार्य स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाना है। इस वर्ष भौतिक स्वच्छता के साथ डिजिटल स्वच्छता और अभिलेख प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन कल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात की। इस दौरान आयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। श्री जैन ने आयोग की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा संघों के साथ हुई बैठकों की जानकारी दी। बैठक में आयोग के सामने महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य का दृष्टिकोण साझा किया गया। बैठक में HCM रीपा की महानिदेशक श्रेया गुहा भी उपस्थित रहीं।

0: नीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारी अपने अनुभव और बेहतर कार्य प्रणालियां साझा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। निर्वाचन विभाग के अनुसार 10,245 वार्डों के लिए करीब 21,000 से अधिक प्रत्याशियों ने लगभग 26,500 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 3 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन के अंतिम दिन कल विभिन्न नगर निकायों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। टिकट वितरण को लेकर कुछ स्थानों पर गतिरोध भी सामने आया। निकाय चुनाव के लिए 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। जयपुर में आगामी त्योहारों और नगर निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के दौरान शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ नगर निकाय चुनाव की मतगणना भी होगी। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
1: सबसे पहले जन्माष्टमी 4 तारीख की है। जन्माष्टमी के लिए यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण प्रबंध किया गया है और इसके लिए हम जो यातायात जिन जिन मार्गों पर रूट डायवर्ट करेंगे उसकी पूर्व सूचना सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से आम जन को दे दी जाएगी। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी है और उसी दिन निकायों के चुनाव की मतगणना भी होनी है, परंतु गणेश चतुर्थी के अवसर के ऊपर जेलन मार्ग पर रूट डायवर्शन किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में भी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। आने वाले दोनों त्यौहार और इलेक्शन के लिए अभी जो हमें पुलिस बल हम लगाएंगे उसके बारे में अभी तैयारियां चल रही है और पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
0: प्रदेश में कच्चे तेल का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80,000 बैरल प्रतिदिन करने की तैयारी है। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कल सचिवालय में पेट्रोलियम और सीजीडी सेक्टर की प्रगति समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में रोजाना करीब 52,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न बेसिनों में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में उत्पादित कच्चे तेल का राजस्थान रिफाइनरी में ही परिशोधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 60 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 23 चालू हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर रवि सिंह शेखावत ने बताया कि बारिश के बाद मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं की ओर से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है।
2: फील्ड स्टाफ है, उसमें डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स भी लगाए गए हैं और आशाएं एएनएम से ये घर घर जाके परिंडे हैं जहां पे बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है या मच्छर जनित जो रोग हो सकते हैं संभावित क्षेत्र वहां पे जा जाके सर्वे भी कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। इसके अलावा उचित मात्रा में दवाइयां एवं एंटीलारवल एक्टिविटी के लिए जो अपने को केमिकल्स की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें उपलब्ध है। बच्चे और गर्भवती महिलाएं बुजुर्ग तो ये लोग हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज के लिए और अपने खान पीन का ध्यान रखें और चिकित्सा परामर्श लें यदि किसी तरह की कोई तकलीफ होती हो तो।
0: दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 39 वर्षीय मेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी और पुष्टि की कि फुटबॉल इतिहास के सबसे गौरवशाली अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अब वो अर्जेंटीना की जर्सी में नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया है। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वीं शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति

0: जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80,000 बैरल प्रतिदिन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरित मानस गान।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरि पर्वत के समीप पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं। पहले सुनिए रेखा भारद्वाज की गाई ये भक्ति रचना।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: लीजिए, अब सुनिए स्वानी शेंदे का गाया ये मीरा भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत लीजिए सुनिए असाध्य रोगों का होम्योपैथिक उपचार। इस विषय पर डॉक्टर श्रीराम शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीराम शर्मा, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और यहाँ नागौर में आयुष होम्योपैथिक चिकित्सालय का संचालन करके और लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी डॉक्टर साहब, हम होम्योपैथी की जब बात करते हैं तो होम्योपैथी को लेकर कुछ लोगों में कई भ्रांतियाँ हैं और चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियां हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं। हम किसी पद्धति को खराब नहीं कह सकते, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदी हो, या फिर आपके होम्योपैथी हो, या यूनानी हो, या और भी कई चिकित्सा पद्धतियां हैं। और अलग अलग बीमारियों का अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में कुछ विशेष इलाज या चिकित्सा भी उपलब्ध है। तो अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो हम देखते हैं कि जहाँ एलोपैथी में या और दूसरी आयुर्वेदिक या अन्य पैथी में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कि परमानेंट इलाज नहीं है, या हम कहें कि उसका उपचार पूरा नहीं है, केवल आराम मिल सकता है लेकिन वो बीमारी का क्योर नहीं होती, बीमारी का निदान और उपचार नहीं होता पूरी तरह से।
2: जी।
1: तो वो आजन्म दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और रोगी परेशान रहता है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सी बीमारियों को आप असाध्य बीमारी मानते हैं, उनका नाम हमें हमारे श्रोताओं के लिए बताएं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि जिन्हें कि हम एलोपैथी को अगर हम दृष्टिगत रखें तो असाध्य कह सकते हैं।
2: जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कि पहली बात तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हर पैथी के अंदर एक स्कोप है और हर पैथी की एक लिमिटेशंस होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी पैथी में सारी चीज़ें ठीक हो। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो इनक्योरेबल है, जिसमें आपने डायग्नोसिस अगर अपन देखें तो उसमें वो केवल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको ट्रीट नहीं कर सकते। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो उसका सिद्धांत यही है कि लाइक क्योर्स लाइक, समान समान को और लोहा लोहे को जिस तरह से काटता है उस सिद्धांत पर, और सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ये इसका मेन सिद्धांत है, उसके बेस पर होम्योपैथिक काम करती है। यूँ लिस्ट तो इनकी बहुत लंबी होगी, लेकिन जैसे गठिया रोग है, इसका पूर्णतः निदान नहीं है। ल्यूकोडर्मा हो गया, जैसे अपन सफ़ेद दाग कहेंगे, बबूती जिसको बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ से अपन लोग जो ग्रसित हैं, अस्थमा हो गया, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, और शीत पित्ती, स्किन की डिजीजों में आओ तो आप सोराइसिस है, शीत पित्ती अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं वो है, पेम्पिगस वल्गेरिस है, लाइकेन प्लेंसस है, तो बहुत सारी स्किन की डिजीजेज हैं जिसमें आदमी जीवन भर स्टेरॉइड्स खाता रहता है और जीवन भर उसकी दवाइयाँ चलती रहती है और उसका इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे धीरे धीरे कमज़ोर होता है, तो वो और दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होने लग जाता है। वहीं होम्योपैथिक इसके पूरे डेप्थ में जाकर उसके रोग का कारण क्या है, हम केवल रोग का इलाज नहीं करते हैं, हम रोगी का इलाज करते हैं, तो उसका कारण क्या है उसके बेस पर हम लोग दवाई देते हैं और उसकी केस टेकिंग की एक पद्धति है, उस पद्धति के आधार पर हम इलाज करते हैं तो पेशेंट जो है पूरी तरीके से ठीक होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर कुछ ऐसी बीमारियों की जो कॉमन है, मतलब आपने बहुत सारी बीमारियों का नाम यहाँ बताए हैं, लेकिन कुछ बीमारियां इनमें ऐसी है जैसे गठिया है, जोड़ों का दर्द है, और कुछ स्किन की जो आपने बताई है कि सोरायसिस है, ल्यूकोडर्मा, मतलब कुछ थोड़ी कॉमन है और कुछ थोड़ी ये है कि बहुत कम लोगों को वो बीमारी होती, तो हम कुछ कॉमन जो डिजीज हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी से फ़ायदा हो सकता है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अगर हम गठिया बाय को लें, सबसे पहले गठिया जोड़ों का दर्द, तो हम देखते हैं कि रोगी ताउम्र परेशान रहता है, जो एक बार गठिया से ग्रसित हो गया तो वो दर्द की दवाएँ लेता है, मालिश करवाता है और भी कई तरह के, और उसको भ्रमित करने के लिए जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के जो लोग हैं वो भ्रमित करते हैं कि इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर होम्योपैथी की बात करें तो उससे संतोषजनक और हम कहें कि स्थायी उसको लाभ हो, इस तरह की क्या आप चिकित्सा पद्धति उसके लिए अपनाते हैं?
2: देखिए, जो गठिया बीमारी है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि भाई अपना इम्यून सिस्टम खुद ही उसको प्रोड्यूस कर जाता है। गाउट जैसे रोग है गठिया, उसमें यूरिक एसिड का इलिवेशन ज़्यादा हो जाता है, कई बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो वो कुछ चीज़ें खाने पीने से, कुछ का कारण जेनेटिक होता है, पारिवारिक हिस्ट्री होती है किसी की, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है।

0: जॉइंटों में सूजन आना, सोडियम मोनो यूरेट जो है उसके क्रिस्टल जो है उन जॉइंट्स के अंदर जमा हो जाते हैं, वो कई बार निकलते नहीं है, तो वो जो जमा हो जाते हैं तो जॉइंट्स में सूजन आएगी, उसमें इन्फ्लामेशन होगा, जॉइंट्स कई बार टेढ़े हो जाते हैं। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी होती है, उसमें आपको पूरा टेढ़ापन आ जाता है और धीरे धीरे धीरे धीरे पेशेंट जो है ग्रसित होता ही जाता है, और लंबे समय तक अगर वो उसको स्टेरॉयड वगैरह देते हैं तो उसकी बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी होती जाती है, बोन्स भी एकदम फ्रेजाइल हो जाएगी, वो टूटने लग जाएगी। तो होम्योपैथिक में हम क्या करते हैं कि उसको पूरी उसकी हिस्ट्री लेंगे कि भाई आपको कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसके अलावा उस लोकेशन देखेंगे भाई, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें कि कहाँ पर ज़्यादा इफेक्टेड है, उस लोकेशन के आधार पर फिर उसके सेंसेशन है कि दर्द का प्रकार किस टाइप का है। अगर आपको सुई चुभने जैसा दर्द है, जलन हो रही है, और दर्द के अंदर साथ में उसके साथ में आपको जो है कि सूजन भी है, और तो उसकी सेंसेशन क्या है, फिर उसका एग्रावेशन देखा जाता है कि भाई एग्रावेशन आपको किस टाइम जो दर्द है वो बढ़ रहा है, किस टाइम आपका दर्द घट रहा है। कोई आदमी बोलेगा साहब हमको सर्दियों में ज़्यादा होता है, कोई बोलेगा गर्मियों में ज़्यादा होता है, किसी को रात में ज़्यादा होता है, किसी को दिन में ज़्यादा होता है। तो होम्योपैथिक में इन सब चीज़ों के आधार पर दवाइयों का सिलेक्शन होता है, उसका मॉडेलिटी देखेंगे, एग्रावेशन एमिलोरेशन, उसको आराम कैसे मिलता है कि भाई उसने जैसे दवाई ले ली, वो बोलेगा कि दवाई से तो मेरे को आराम है, जब तक लेता हूँ तब तक तो आराम है, तो वो तो दर्द निवारक दवाई है, उसका एक्चुअली में दर्द तो खत्म हुआ नहीं ना, वो तो कुछ देर के लिए उसको उसने सेंसेशन उसको माइंड को है उसको डाइवर्ट कर दिया, बाकी पेन तो हो ही रहा है उसको। तो इन
1: जी
0: सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका डीप केस स्टैकिंग करके और फिर जो है मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, और उस मेडिसिन को जब दिया जाएगा तो रोगी जो है धीरे धीरे धीरे धीरे पूर्णतः ठीक होता जाता है। हालांकि
1: जी
0: लंबा प्रोसेस रहता है क्योंकि हमारे पास जो रोगी आता है वो चारों तरफ से भटक के उसके बाद में आता है। प्राइमरी स्टेज पर वो एलोपैथिक दवाई लेगा, उसके बाद में वो आयुर्वेद के पास में जाता है, उसके बाद में न जाने कहीं कहीं स्टेरॉइड्स पता नहीं क्या क्या खा के लास्ट में वो होम्योपैथिक के पास में आता है। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि भाई उन जितनी भी दवाइयाँ उसने ली है उन सबको एंटीडोट किया जाए, कि भाई उनका पूरा प्रभाव जो है उसको खत्म करके फिर हम दवाई का सिलेक्शन करेंगे, तो वो होम्योपैथिक दवाई जल्दी काम करेगी।
1: जी डॉक्टर साहब, गठिया का मतलब उम्र से सीधा संबंध है या आजकल तो कुछ अर्ली एज में भी गठिया और लोगों को होने लग गई है?
0: ऑटो इम्यून डिजीज का एज से कोई फैक्टर नहीं है, उसका
1: जी
0: एज से कोई रिलेशन नहीं है, वो कभी भी किसी को भी हो सकता है।
1: जी
0: उसके अलावा जैसे सोराइसिस है, ये स्किन का, उसमें क्या होता है कि स्किन के छिछड़े टाइप के उतरते जाते हैं, आपकी पपड़ियां उतरती जाएगी स्किन की, और उसके अंदर जैसे कि लाल लाल कलर के चकते हो जाएंगे, और फंगल इन्फेक्शन अभी इन दिनों में बहुत फैल रहा है, तो फंगल का भी कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव है नहीं। जब तक आप एंटी फंगल दवाइयाँ खा रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से वो भी ठीक नहीं हो रहा है। कई रोगी आ रहे हैं उसके, एक शीत पित्ती नाम का रोग होता है अर्टिकेरिया, उसमें दाफड़ हो जाते हैं, चकते होते हैं आपको, तो वो क्या चीज़ खाने से हो रहे हैं क्या चीज़ नहीं खाने से हो रहे हैं उसको साथ में मैनेजमेंट भी बताना पड़ेगा, और साथ में फिर मेडिसिन देंगे तो वो एकदम पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। स्किन के अलावा भी जैसे कि ये रोग है ल्यूकोडर्मा, अभी अपन बात कर रहे थे सफ़ेद दाग या बबूती की, तो ये रोग भी, इसके रोगी भी काफ़ी होम्योपैथिक दवाई से अर्ली स्टेज में आते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है आदमी। अब आता ही आदमी लेट है फिर वो उम्मीद करता है कि हम जल्दी ठीक हों, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि समय उसमें भी, बाकी जो आपने दवाइयाँ ली है उनको एंटीडोट करने में भी समय लगता है, तो उस तरह से फिर एंटीडोट करके फिर होम्योपैथिक दवाई दी जाती है। तो ल्यूकोडर्मा के भी मेरे क्लिनिक पे खूब सारे पेशेंट आए हुए हैं और उनको रिजल्ट भी मिला है, कई लोग काफी क्योर हो गए हैं पूर्ण रूप से, उनको दवाइयां बंद करने के बाद में भी वापस उनको सफेद दाग की उस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, बबूती वगैरह जिसको बोलते हैं अपन।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये जो स्किन डिजीज है उसका भी एलोपैथी में ये होता है कि लंबे समय तक दवाइयां लेते रहो तब तक आराम रहता है लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं होता। तो होम्योपैथी में आप लगभग कितना समय मानते हैं कि कितने समय में मरीज को लाभ होने लग जाता है दवाई शुरू करते ही और कितने समय में वो पूर्ण क्योर उसका हो जाता है?
0: मरीज समय, होम्योपैथिक में समय की कोई वो बाध्यता नहीं कह सकते, क्योंकि मरीज के ऊपर है कि वो केस टेकिंग कितना अच्छे से दे पाता है, क्योंकि लंबे समय से जब अगर आदमी बीमार होके आता है तो उसको खुद को याद नहीं रहता है कि मेरी जो बीमारी है उसका प्रारूप क्या था, शुरुआत में क्या प्रारूप में आई थी बीमारी। तो कई बार जैसे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं तो हम जैसे उनको पूछेंगे कि भाई आपकी भूख कैसी है, प्यास कैसी है, आपका स्टूल कैसा आ रहा है, आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है, आपको धूप में, सर्दी में, गर्मी में आप क्या चीज खाना पसंद करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री देंगे। अगर वो कंप्लीट हिस्ट्री एक बार में दे देता है तो रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर उसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है उसको, तो फिर उसके बाद में उसको हम बार बार किसी तरीके से उसकी हिस्ट्री, जितना अच्छे से हिस्ट्री देगा उतना जल्दी ठीक होता जाएगा, और
1: जी
0: उसके आधार पर दवाई का जितना अच्छा सिलेक्शन होगा, वो होम्योपैथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो उस दवाई का सिलेक्शन किस तरह से करता है। अगर
1: जी
0: राइट सिलेक्शन हो गया, राइट रेमेडी लग गई, तो विद इन डेज में ही ठीक हो जाता है, कोई सालों की जरूरत ही नहीं है उसमें।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि जो ये घुटनों का, टखनों का, जो जोड़ों का प्रत्यारोपण है, वो एलोपैथी में काफी लोकप्रिय भी हो गया है और काफी सक्सेसफुल भी माना जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी व्यक्ति को ये रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़े, वो होम्योपैथी से उसकी चिकित्सा हो सकती है क्या?
0: देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अलग अलग स्टेजेज होती है। अगर आप शुरुआती स्टेजेज में हो तो सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती है। सर्जरी की रिक्वायरमेंट ही जब लास्ट में जाके होती है तब सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। उससे पहले अगर आप होम्योपैथिक दवाई लोगे, साथ में आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो अपने को सर्जरी तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और जो भी सर्जिकल केसेज हैं वो सारे के सारे केसेज हैं जो उसके बगैर, जैसे किडनी स्टोन है तो आप किडनी स्टोन होम्योपैथिक दवाइयों से आराम से निकलता है। गाल स्टोन है वो भी डिजोल्व हो सकता है। कई लोगों की ये भ्रांति है कि भाई पित्त की थैली की पथरी है वो डिजोल्व नहीं होगी, या फिर वो जो है निकलेगी कहाँ से, निकलने की संभावना ही नहीं है। निकलने की संभावना तो नहीं है लेकिन घुल तो सकती है, तो उसके घुलने की दवाइयां हैं होम्योपैथिक के अंदर। किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन में आप सर्जरी करवा लीजिए, लेकिन आपको बार बार सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको जब कितनी बार सर्जरी कराएंगे आप, वो तो वहां पर तो केवल सर्जिकल प्रोसीजर्स है। अगर आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं, आप नहीं कराना चाहते, तो होम्योपैथिक ऑप्शन है आपके पार्ट में, उसमें दवाइयों से आपको बिल्कुल आराम मिलता है। पाइल्स हो गया, मस्से की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें सर्जरी कितनी बार कराएंगे आप? सर्जरी से करा दी, उसके बाद में फिर वापस आउटवार्ड ग्रोथ है वो तो वापस डेवलप हो गई, तो होम्योपैथिक दवाई लोगे तो वो उसे कंप्लीट ठीक हो जाएगा। एनल फिस्टूला ले लो आप, उसमें क्या होगा, फिस्टूला की सर्जरी कितनी बार होगी? जब तक आप डेप्थ में उस तक जाएंगे नहीं तब तक वो सर्जरी सक्सेस भी नहीं होगी। तो कई बार बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जिनकी सर्जरी पे सर्जरी, सर्जरी पे सर्जरी, तो सर्जन से सर्जरी की बजाय आप पहली बार उसमें भी आके देखिए, अल्टरनेटिव थेरेपीज में उन चीजों का हो सकता है कि आपको बगैर सर्जरी के भी निदान हो जाए। अब यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है जो अपनी बच्चियों को अभी ज्यादा हो रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि उसमें सर्जरी करवानी पड़े आपको, उसके बगैर भी तो ठीक हो सकते हैं, हार्मोनल का संतुलन कर सकते हैं। मेरे पास कई इनफर्टिलिटी के केसेस हैं जो आप, उसमें कोई जरूरी नहीं है आईवीएफ की तरफ भी जाए, उससे पहले भी ठीक हो सकते हैं। ओलिगो स्पर्मिया है जिसके स्पर्म काउंट कम हो और स्पर्म काउंट बिल्कुल भी नहीं हो, तो उनके भी निदान है होम्योपैथी के अंदर। जैसे किसी को ये अपने उसको सूजन आ जाती है कईयों को फेस पे, किडनी के जो पेशेंट हैं, जैसे कि सीकेडी के पेशेंट हैं, उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, तो होम्योपैथिक दवाई अगर साथ में चलाएंगे तो आपको डायलिसिस की, हो सकता है कि अवधि कम हो जाए। मैं कंप्लीट रूप से ठीक होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए ये हो सकता है कि भाई आपको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ रहा हो सकता है आपको एक बार ही कराना पड़े।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि कैंसर के जो पेशेंट हैं वो भी काफी बढ़ रहे हैं, तो अगर कैंसर और होम्योपैथिक चिकित्सा की बात करें तो
0: बिल्कुल इफेक्टिव है होम्योपैथिक दवाई कैंसर में। और कीमोथेरेपी आप नहीं लगाओ उससे पहले पहले अगर होम्योपैथिक दवाई लेते हो तो वो अच्छा काम करती है उसमें। कीमो के बाद में अगर आप, कई बार जैसे कि उसके बाद में उसके साइड इफेक्ट्स हैं, हो जो एलोपैथिक दवाई आपने कीमोथेरेपी में आपने यूज करी है, उसके बाद में उनके जो एडवर्स इफेक्ट है उनको होम्योपैथिक दवाई कम कर सकती है। जैसे ट्यूबर क्लोसिस का आपका लंबा टाइम का इलाज चल रहा है, भाई 9 महीने आपको ट्यूबर क्लोसिस की दवाई लेनी है, लेकिन 9 महीने कहना आसान है, उस दवाई के साथ में उनको साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, जैसे बर्निंग हो गई, उनके पाँव में जलन हो गई, उसके अलावा उनको वॉमिटिंग होती है, उसके अलावा जो उनको एसिडिटी बनती है, तो उनके एडवर्स इफेक्ट को आप होम्योपैथिक दवाइयों से उनसे कम कर सकते हो। जितने भी अगर आपको जो दवाइयाँ चल रही है, डायबिटीज अगर आपको है तो उसके साथ में, अगर आपको इंसुलिन लग रहे हैं लेकिन उसके साथ में आपको बहुत सारी अल्टरनेटिव प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्कोमिटेंट उसके दूसरे दुष्प्रभाव आ रहे हैं दवाइयों के, तो उनको आप होम्योपैथिक दवाई से ठीक कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में कुछ ऐसी बीमारियों का भी इलाज है क्या, जैसे कि जिनके लिए कि हम एलोपैथी या और दूसरी पद्धतियों में कोई इलाज नहीं है, या हम जितनी हम जानते हैं एक कॉमन मैन जो जानता है उसके अनुसार, जैसे कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ये कुछ आदतें और इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चे नींद में पेशाब कर देते हैं बिस्तर में, या फिर किसी को जो है वो डरावने सपने आते हैं, या फिर नींद में खर्राटे भरते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि अगर हम एलोपैथी के हिसाब से सोचें तो शायद उपचार नहीं है। या बहुत कॉमन नहीं है और पॉपुलर नहीं है, तो होम्योपैथी में इनका उपचार कहाँ तक संभव है?
0: होम्योपैथिक में ये है, मेंटल डिजीजेस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। डिप्रेशन के पेशेंट हो गए, या फिर जैसे बच्चे का आपने बोला, बच्चे जो है रात को नींद में पेशाब कर देते हैं, तो उसका भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, या फिर जिनको नींद नहीं आती हो, या फिर जो जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हो, अभी जैसे आने वाले टाइम में एग्जाम आ रहे हैं, तो बच्चों को एग्जामिनेशन फियर होता है कि भाई मैं अगर एग्जाम में फेल नहीं हो जाऊं, या फिर मेरे को पढ़ाई जो है याद नहीं होती हो, या फिर उनको जैसे ऐसा कुछ फियर लगता हो, तो एग्जामिनेशन फंक की भी बहुत सारी मेडिसिन्स आती है। या जैसे कोई, जैसे आपको अर्ली एज के अंदर जैसे कोई चीज़ों की हीन भावना हो गई हो, आप पब्लिक में या पब्लिक स्पीकर हो, आप बोल नहीं पाते हो अच्छे से, तो हीन भावना से ग्रसित हो, सुसाइडल थॉट्स आते हो, आपको मरने का इच्छा करता हो कि भाई मैं अब जीने की इच्छा नहीं है, तो इन सब चीज़ों के भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट है। मेंटल डिजीजेज का बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है, या मैं भूल जाता हूँ किसी चीज़ को मैंने रख दिया है, तो अल्जाइमर डिजीज हो गई, बहुत सारे ऐसे इनक्योरेबल डिजीजेज मेंटल, जिनका अपने को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है।
1: जी डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्योर की बात तो तब आती है जबकि आपके कोई रोग हो जाए। तो होम्योपैथी क्या कहती है इस बारे में कि किस प्रकार की जीवन शैली होनी चाहिए? जो आजकल बीमारियां बढ़ रही है हर आदमी में, हर आदमी किसी न किसी रोग से ग्रस्त है और परेशान है, चिकित्सा पर खर्च भी बहुत हो रहा है लोगों का, तो किस तरह की जीवन शैली की, जो सामान्य बीमारियां हम देखते हैं कि बीपी है और डायबिटीज है और मतलब तनाव अवसाद ये है, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली का भी कारण होता है, तो वो आप थोड़ा होम्योपैथी के बारे क्या कहती है इस बारे में?
0: होम्योपैथिक ये एक, भाई हाइपरटेंशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिजीजेज है। डायबिटीज है, ये भी कोई बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल डिजीजेज है। आपकी जीवन शैली अगर सही रहेगी, जैसे कि भाई आप डायबिटीज के लिए पर्टिकुलर, हमें डिजीज के लिए आपको बोलूँ तो भाई मीठा नहीं खाइए, शुगर जो है कम खाइए, मैदा है, सफ़ेद चीज़ें आप कम करिए, वॉक करना स्टार्ट करिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। हाइपरटेंशन ये है कि पूर्ण रूप से नींद लें अच्छे से, और एकदम कोई भी चीज़ को जल्दबाजी में, शॉक अगर किसी को लगता हो, तो वो शॉकिंग हिस्ट्री, उसके बाद में उसको कई बार डबल, कई बार अपन जो होता है ना, बीपी नापने के ऊपर भी डिपेंड करता है। आजकल डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट लेके आ गए आप घर में, और आपने नापा, आपका पोस्चर ही सीधा नहीं है, आपने उल्टा सीधा उस तरीके से नाप के और अपने आप को अवसाद में घोषित कर दिया कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ, जबकि बीपी का पेशेंट आप हो ही नहीं। उसमें आपने जो नापने का तरीका आपका, उसका गलत तरीके से आपने अपने आप को मान लिया कि भाई मैं बीपी का मरीज हो गया, और आपने दवाई खाना शुरू कर दिया। तो और आजकल सबसे बड़ा जो एक सोशल मीडिया का क्रेज चल रहा है, कि सोशल मीडिया से आप जो भी दवाई उठाई आपने, इंस्टाग्राम से, आपने फेसबुक से, आप बगैर पूछे तो भगवान का प्रसाद भी नहीं लेते हो कि भाई हमारे के कौन से भगवान का है, और आप दवाई जो है डायरेक्ट दवा है, आप बिना डॉक्टर की सलाह के आप
1: मतलब
0: दवा,
1: सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर रहे
0: सेल्फ
1: हैं?
0: मेडिकेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं
1: जी
0: आपको,
1: जी
0: चाहे कोई भी, अगर आप, ये भी एक मिथ है कि भाई जो आपको बताने वाला डॉक्टर है वो भी आपकी फील्ड का ही हो, लेकिन फील्ड का होने से क्या होगा, आपको जब तक सामने मरीज नहीं बैठा हो, उसकी स्थिति अगर आपको पता नहीं हो, तो आप दवा कैसे चूज करोगे उसका? ये तो सिद्धांत ही नहीं है होम्योपैथी का, बगैर उसको पेशेंट को देके आप दवा चूज कर सकते हो, क्योंकि हम तो उसका पूरा जीवन शैली, उसका पूरा केस चेकिंग, पूरा हिस्ट्री लेते हैं, उसके आधार पर दवाई का सिलेक्शन करते हैं। तो
1: जी
0: जो आजकल ये बड़े क्रेज हो रखे हैं, तो उससे थोड़ा सा दूर रहें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं लें, और फिर आप होम्योपैथिक की तरफ ये कहेंगे कि भाई हमको ये काम नहीं करी, दवा तो काम करती है, आप अपने हिसाब से ले रहे हैं, उस गलती को मत करिए,
1: जी
0: डॉक्टर की सलाह के बगैर मत करिए।
1: जी यानी कि प्रेजुडिस नहीं हो, अगर प्रेजुडिस होते हैं तो जीवन में और भी कई समस्याएं आती है। हम ये प्रेजुडिस हो जाएं कि नहीं होम्योपैथी में तो बहुत टाइम लगता है, या होम्योपैथी में क्या है कि ऐसी बीमारियां जो जल्दी ठीक हो जाती हैं एलोपैथिक से वो नहीं होती हैं, या उसमें बहुत प्रिकॉशन है या बहुत एहतियात और बहुत मतलब वो कहें कि वो लेने पड़ते हैं कि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: प्रिकॉशंस, तो वो चीज़ें अगर होंगी तो फिर आपका अगर फेथ नहीं है, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि अगर आप किसी भी पैथी में जाएं अगर फेथ नहीं है तो वो शायद आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगी।
0: फेथ भी, और फिर डॉक्टर्स को भी जो है उस पेशेंट को पूरा क्लियरली कुछ चीजों को समझाना चाहिए कि भाई अगर आपको ये चीज है, ये डिजीज है, और इसका इलाज हमारी पैथी में ये चीज का इलाज है, और हम इसको यहां तक इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अल्टरनेटिव थेरेपीज में चले जाइए। तो उसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को तो नॉलेज नहीं है ना भाई मेरे को सोराइसिस का बीमारी का इलाज है या नहीं है, या मेरे को सोराइसिस है या क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा हमारे तो हनीमैन साहब ने यही बोला है कि आप फिजिशियन को भी अनप्रिजुडिस होना चाहिए, उसको पहले से अगर आपको अनुमान भी है कि अगर इसको ये प्रॉब्लम है तो भी आपको अनुमान नहीं लगाना है उसका।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी है, और निश्चित रूप से जो भी हमारे श्रोता और उनके परिवार में कोई लोग या उनके रिश्तेदार पड़ोसी जो भी इस तरह के विभिन्न असाध्य बीमारियों से ग्रस्त होंगे, वो शायद होम्योपैथी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है और दिन ब दिन लोकप्रिय भी हो रही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है,
0: जी जी
1: तो ये
0: बिल्कुल
1: बहुत बड़ी चीज़ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो होम्योपैथी को लेकर कुछ उनके मन में भ्रम है वो दूर करेंगे, और अपनी जो भी समस्या है, स्वास्थ्य समस्या, वो होम्योपैथी के माध्यम से भी दूर करेंगे।
0: जी जी बहुत
1: डॉक्टर साहब,
0: बहुत
1: आज आप
0: धन्यवाद
1: हमारे स्टूडियो में पधारे और हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद साहब आपका।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिवराम शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। विषय था असाध्य रोगों का होम्योपैथिक उपचार। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने पुराने जमाने के।

ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम था कारवां। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम गीत।

जब जब फूल खिले। जी हाँ, यह है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: आइए अब सुनते हैं दास्तान फिल्म का गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ।

0: के फिल्मी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने पुराने जमाने के। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गाने नए तराने नए। प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बुलेट राजा फिल्म से, जिसे गाया है वाजिद और श्रेया घोषाल।

यशिता शर्मा, मनीष कुमार, टीपू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह का गया फिल्म दिल धड़कने दो का ये गीत।

रिजब पेश है दम लगा के हर्षा फिल्म का गीत, इसे गाया है कुमार सानू, साधना सरगम और साथियों ने।

लीजिए अब सुनिए यासिर देसाई की आवाज़ में फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था का ये गीत।

प्रोग्राम के आखिर में ये सुनते हैं हेट स्टोरी फोर्थ फिल्म का गीत, जिसे गाया है मिथुन जुबिन नौटियाल और अमृता सिंह ने। इससे पहले जो आपने गीत सुना, हमने इसे लिया था फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था, जिसमें आवाज़ें थी यासिर देसाई और पलक मुच्छाल की। आइए अब सुनते हैं हेट स्टोरी फोर्थ का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने नए तराने नए कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। दिन के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण मुंबई केंद्र से।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

ये कवाली आप सुन रहे थे हंसते जख्म फिल्म से, मोहम्मद रफी बलबीर और साथियों की आवाजें थी। कैफे आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था।

पहेली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हेमलता और चंद्राणी मुखर्जी की आवाजें थी। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: राजेश रोशन की तर्ज इब्राहिम अश के बोल अनुराधा पौडवाल पंकज उदास और साथियों की आवाजें फिल्म थी बाहर आने तक।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: प्रस्तुत कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम।

0: 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

बेगम अख्तर को अभी आपने सुना, ये खजरी थी बेगम अख्तर की आवाज में। और आगे इस कार्यक्रम में श्रोताओ, अब आपको सुनवाते हैं एक नगमा, आवाज सुरेश वाडकर की।

0: शहरयार की लिखी गमन फिल्म की यह गजल आपने सुनी सुरेश वाडकर की आवाज में, जयदेव का संगीत था।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: मेरी चुनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत और संगीत था ललित सेन का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

बजरंगी भाईजान इस फिल्म की ये कवाली आपने सुनी अदनान सामी और साथियों की आवाजों में। कौसर मुनीर के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। रंग तरंग ये प्रोग्राम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे पहले सम्मेलन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने हाथ मिलाया और बातचीत की। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरी। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विश्व के बड़े आयातकों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन विदेशी घटनाक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया देने और अपनी विकास गति को बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में सहायता करेगा। केंद्रीय गोबरधन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट के बाद वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 198 अंक बढ़कर 77,155 पर, जबकि निफ्टी 36 अंक की वृद्धि के साथ 24,116 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: सी अर्जुन की तर्ज थी, इंदिवर की रचना आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म थी पुनर्मिलन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार।

0: कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की रचना, आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म थी बनारसी बाबू।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आशा भोसले की आवाज में आपने सुना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गीत। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सोनिक ओमी की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। आप सुन रहे थे आबरू, फिल्म का गीत जीएल रावल का लिखा।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीत और संगीत था रविंद्र जैन का, महेंद्र कपूर की आवाज में फकीरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
6: सखी सहेली।

0: वर्मा मल्लिक का लिखा गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज से। ये दो गाना था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म नागिन से यादों की महफिल। ये प्रोग्राम श्रोताओ यहीं संपन्न हुआ।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।
3: विविध भारती के बाकी प्रोग्राम्स आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। देश भर में आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत 7 सितंबर तक संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली और पोषण के प्रति जागरूकता के वास्ते विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही सही पोषण बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया जाएगा। वहीं आज से देश में स्वच्छता पखवाड़ा 2026 की भी शुरुआत हो रही है। इस अभियान का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़ों के थैलों और दोबारा प्रयोग होने वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उर्वरक विभाग के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी अभियान का लक्ष्य भौतिक और डिजिटल दोनों कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाना है। केंद्रीय गोवर्धन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना 2035-36 तक लागू रहेगी। संपीड़ित बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ बनाएगी। इस योजना का उद्देश्य घरेलू संपीड़ित बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना है। ये बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 6 तारीख को इस योजना को मंजूरी दी थी। जस्टिस संजय के अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश भी की है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का प्रभार जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड हमले के पीड़ितों के लिए 6 सप्ताह के भीतर उचित पुनर्वास उपाय तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन उपायों में एसिड हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, चिकित्सा सहायता और उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा शामिल होनी चाहिए। साथ ही पीड़ितों को अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान करने पर विचार करने को कहा गया है। इसके अलावा एसिड हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाना चाहिए। ये निर्देश 2013 में जारी दिशा निर्देशों के बावजूद एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच आया है। पाली में गणेश महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली गणेश प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। कारीगर प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल गोबर से गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं का आकार 3 से 12 इंच तक है और इन पर पर्यावरण अनुकूल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमाओं में तुलसी, अपराजिता सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों के बीज डाले गए हैं। आयोजकों के अनुसार 10 दिन तक पूजा के बाद इन प्रतिमाओं को घर के गमले में ही विसर्जित किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 1:05 हुए हैं, आप फिर से सुनेंगे विविध भारती।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये गीत आप सुन रहे थे। आपको ये बताना है कि ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे जिस साइकिल में जा रहे हैं, ये कौन से रंग की साइकिल है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश साइकिल की बातें हैं इसमें, और बचपन और साइकिल का रिश्ता सिर्फ एक सवारी का नहीं बल्कि आजादी, रोमांच और पहली बार खुद पर भरोसा करने का एहसास था। संतुलन की पहली सीख थी, साइकिल सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं थी, वो हमारी पहली सवारी और सपनों का पंख थी। आज भले ही कई चार पहिया गाड़ियां आ गई हों, लेकिन जो सुकून और बेफिक्री उस दो पहिए की सवारी में थी, वो फिर कभी नहीं लौटी। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन की स्मृतियों के गलियारों में साइकिल केवल लोहे, रबर और पैदल से बनी एक ढांचा नहीं बल्कि आजादी का पहला पंख और जीवन का पहला दर्शन होती है। जब पिता की उंगली थामे एक बच्चा पहली बार साइकिल की गद्दी पर बैठता है, तो वो केवल यात्रा की शुरुआत नहीं करता बल्कि संतुलन, आत्मविश्वास और दुनिया को अपने नजरिए से देखने की कला सीखता है। तो यहां आपको बताना है श्रोताओं कि क्या आप साइकिल जब चलाते थे तो कभी आपने कैंची साइकिल चलाई है? ये कैंची साइकिल क्या होती है, ये भी आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक मजेदार बात है, पिताजी ने पहली साइकिल ली थी, वो सेकेंड हैंड थी, जो मैं और मेरे पापा यूज करते थे। बाद में नौकरी मिली तो ट्रेन से उतरने के बाद कंपनी जाने के लिए साइकिल लेनी पड़ी। वो एक मित्र के साथ इन्होंने कुछ 45 रुपीस लिखा है कि उसमें ली थी, जो सेकेंड हैंड थी, और मित्र का कहना था कि उसे मैं रोज डबल सीट खींचू। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे श्रोताओं जो उस वक्त जिनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग किराए की साइकिल पर हम बच्चे खूब साइकिल चलाते थे। ऐसे भी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो जरूर हमें लिख भेजिए। साइकिल की सवारी करते हमारे ये कौन अदाकार हैं।

साइकिल अगर मौसम बहुत अच्छा हो श्रोताओं, यानी धूप कड़ी न हो, तो चलाने का मजा कुछ और ही होता है। आजकल कुछ ऐसा ही मौसम है। आजकल क्या आप साइकिल चला रहे हैं तो हमें जरूर बताइए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम के समस्त प्रिय श्रोतागण, आप सभी को शुभ दिवस तथा स्नेह वंदन। और शब्द इन्होंने लिखे हैं जीवन सफर मंजिल हो सकते हैं, साइकिल भी तो है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज मुझे याद आ रहा है कि ये सारे शब्द हो सकते हैं, साइकिल, पापा और सफर, ये लगते हैं मेरे लिए। तो ये इबारत बिल्कुल मेरी ही कहानी है। मैं खुद मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूं और रोज अपनी दुकान पर साइकिल से ही जाता हूं। जब भी रास्ते में गुनगुनाता हूं, बचपन की यादें और पापा का सिखाया हौसला याद आ जाता है। और सच में साइकिल जैसी प्यारी और टिकाऊ सवारी कोई और नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और साइकिल का रिश्ता ही कुछ अलग सा था। आज भी याद आता है वो कभी कभी साइकिल से स्कूल जाना, वो मस्ती, वो लड़ाई, वो भाई बहनों का प्यार। साइकिल के साथ सिर्फ पहिए नहीं घूमते, हमारा बचपन, हमारी शरारतें और छोटी छोटी खुशियां भी दौड़ा करती हैं। गिर कर फिर उठना और आगे बढ़ते जाना, शायद साइकिल नहीं जिंदगी का पहला सबक सिखाया। अब इन कलाकारों को आपको पहचानना है श्रोता, और फिल्म पहचाननी है।

हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि प्रेम रोग फिल्म में ऋषि कपूर की साइकिल जो थी वो काले रंग की थी। जी हाँ, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया इशारा फिल्म का, उसमें जॉय मुखर्जी बहुत ही खूबसूरती से और बड़े मजे से साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कैंची साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें आधा पैदल मारना पड़ता है। बचपन में जब साइकिल तक पूरे पैर नहीं पहुंच पाते थे तो आधा पैदल ही मारा करते थे। जी हाँ, क्योंकि बड़े लोगों की जो साइकिल थी वो आसानी से मिल जाती थी श्रोताओं। और तब क्या होता था कि हम लोग छोटे होते थे, बड़े लोगों की साइकिल जब उठाकर चलाते थे तो पहुंच नहीं पाते थे, फिर कैंची साइकिल चलानी पड़ती थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जी श्रोता मित्रों को नमस्कार, और साइकिल का बचपन में हर किसी को चाम रहता है। हमने भी किराए की साइकिल लेकर बहुत चलाई है और कांची डंडा फिर सीट से आज भी साइकिल ही चलाता हूँ। जी हाँ, और साइकिल में श्रोताओं अलग अलग तरह के जो जो लाइट्स होती थी वो पहले होती थी, उनकी कुछ अगर याद है तो आप जरूर बताएं। वैसे मेरे पास तो कुछ याद है कि साइकिल में किस तरह की लाइट्स हुआ करती थी, यानी कहें कि लाइट हुआ करती थी, किसी किसी साइकिल में होती थी पर ज्यादातर साइकिल में नहीं हुआ करती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं विद्यार्थी दशक में 25 पैसे देकर पिताजी ने साइकिल सिखाई मुझे, बाद में हम 8x9 किलोमीटर साइकिल पर धूप में साइकिल पर जाते थे। उस वक्त सहेलियों के साथ जाते थे। सबसे बढ़िया साइकिल तो वो सर्कस में देखी जहां कई लड़कियां साइकिल पर सवार हो जाती हैं। जी हाँ, ये तो बड़ा कमाल का होता था। और एक घर के पास भी तो कभी कभी ऐसा खेल दिखाने लोग आते थे कि जिसमें कई कई दिन लगातार साइकिल चलाते रहते थे। ऐसा खेल आपने कभी अपने मोहल्ले में, कभी आपने शहर में देखा हो तो आप ये यादें हमसे ताज़ा कर सकते हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज दिलचस्प गीत होंगे साइकिल पर। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल का दौर वो था, मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने या स्कूल जाना साइकिल से हुआ करता था। मैं आज भी सब्जी मंडी या दूरी कोई खरीदारी होती है तो साइकिल पर ही करता हूँ, यानी कि पास की जो दूरी होती है उसके बारे में शायद ये बात कर रहे हैं। वैसे मेरे पास 2-व्हीलर है लेकिन पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी है, इसलिए रोज नियमित साइकिल चलाता हूँ। ये डाकिया कौन है?

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे।
1: खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी कल

डाकिया डाक लाता था और जब उसके साइकिल की घंटी बजती थी श्रोताओं, तो क्या एक जुनून होता था कि लोग उसके पीछे जाते थे, घर के बच्चे हों या बूढ़े, कि शायद उनकी कोई चिट्ठी आई हो। तो इस तरह की भी कोई यादें अगर आपकी हो तो आप साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे पलकों की छाव फिल्म का गीत। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि राजेश खन्ना डाकिया के रूप में है, किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तरफ से गुलजार का लिखा ये प्यारा सा गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहले साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बचपन की आजादी, पापा का प्यार और जीवन का पहला सबक थी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन जब पहली बार कैंची साइकिल जब हमने चलाई, थोड़ा बहुत गिरा, फिर संभला, फिर धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। कैंची साइकिल का मतलब साइकिल के फ्रेश के अंदर एक पैर, धीरे एक पैर इधर एक पैर उधर करके कैंची साइकिल चलाई जाती थी और बचपन की यादें अभी भी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल में लाइट के लिए पिछले व्हील से चलने वाला डायनमो लगा होता था। लाइट जब जलती थी तो डायनमो व्हील के साथ चलता था और फिर उसको कुछ घर्षण से जो करंट मिलता था उससे ये डायनमो जलता था। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि साइकिल मेरे पापा की थी और हीरो डंडे वाली, मैंने वो सीखी थी, कई बार गिर के, कई बार किसी के ऊपर सीधे, बस तब से बंद हुई, एक बार तो खड़े ट्रक में घुस गई, बहुत पिटा था बाबा मेरे बाबा ने, मतलब इनके बाबा ने शायद इनकी पिटाई की। तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है, जहाँ साइकिल चलाते समय बहुत ही ज़्यादा सतर्कता की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा होता है श्रोताओं कि जो बच्चे होते हैं वो साइकिल की दौड़ जो है वो अन्य गाड़ियों के साथ लगाते हैं, तो ऐसा ज़रूर संभव हो सकता है। साइकिल जितनी हमें प्रिय होती है तो लगता है कि इसकी रफ्तार उसी हिसाब से होनी चाहिए, और होती भी वैसे तो वास्तविकता नहीं है, तो इसलिए बहुत संभल कर चलाना चाहिए साइकिल। और एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल पर पहले हम बैठ जाते थे, उतर नहीं पाते थे और बस गोल गोल चक्कर काटते रहते थे। जी हाँ, गोल गोल चक्कर काटने में ही तो हम गिरते थे और फिर सीखते थे, और गिरना, फिर उठना, फिर चलना, और इसी तरह से जो जीवन का एक फलसफा है कह सकते हैं साइकिल, वो भी हमें सिखाती है। वैसे साइकिल आप क्या समझते हैं कि आज भी प्रासंगिकता इसकी बनी हुई है, तो आप हमें ज़रूर लिखें। और साइकिल क्या आज भी आप चलाते हैं, आपने सहेज रखी है?

मेरे सितम फिल्म का ये गीत था विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया। हमारे कुछ श्रोताओं ने 7 साइकिलें लिखी हैं, कुछ ने 8 लिखी हैं, तो कितनी साइकिलें हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप हमें बता सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 26 साल पहले मैं और मेरे बड़े भैया ने बैनर छपाई का काम शुरू किया था, तो पहली साइकिल ली थी, फिर वो चोरी हो गई, लेकिन साइकिल की चाबी अभी भी संभाल रखी है। देखिए कितना प्यार होता है श्रोताओं साइकिल से। आपकी कौन से रंग की साइकिल थी आप अगर बताना चाहें तो आप जरूर बता सकते हैं। वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें 3 पहिए की एक लकड़ी की साइकिल आती है भी, और पहले भी आया करती थी, आजकल तो वॉकर आ गए हैं, लेकिन 3 पहिए की लकड़ी की साइकिल से बच्चे चलना भी सीखते थे। न सिर्फ साइकिल चलाना बल्कि वो चलना भी सीखते थे। ऐसी कुछ यादें हैं। वैसे आजकल आप किस तरह की साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल बचपन की आंगनवाड़ी होती है, साइकिल सीखना चलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन में ट्राई साइकिल इनके पास थी, उस वक्त वो कांच पर गिर गए थे, अंगूठा कट गया था, 3 टाके आए थे, आज भी निशान है। तो भाई ऐसी भी बातें हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारा नमस्कार, साइकिल बचपन में हमारे लिए केवल एक खेलने का जरिया थी, वही साइकिल आज रोजी रोटी और अपने परिवार चलाने का जरिया बन गई है। जी हाँ, साइकिल से चलना तो बहुत ही अच्छी बात है श्रोताओं।

आप भी साइकिल से आजकल चलते हैं या फिर चलाना आपको अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि साइकिल आज भी अनगिनत यादों का प्रतीक है, जहां गति से ज्यादा दिशा, दिखावे से ज्यादा सादगी और गिरने की डर से ज्यादा उठकर दौड़ने का जुनून मायने रखता है। पिता के हाथों से मिली वो पहली साइकिल दरअसल जीवन की हर चुनौती से मुस्कुराकर पार पाने का पहला पाठ थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जब स्कूल में थी तो किराए की साइकिल लेकर खूब चलाई, लेकिन अपनी साइकिल नहीं ले पाई। इस बात का मलाल मुझे है। अब इस उम्र में थोड़ा डर लगता है कि कहीं हाथ पर न टूट जाए, लेकिन सुबह योगा में साइकिल जरूर चलाती हूँ और एकदम फिट रहती हूँ। जी हाँ, हम भी फिट रहते हैं और पर्यावरण भी इससे बहुत प्रभावित होता है। श्रोताओ, ये कौन जनाब है साइकिल पर?

0: ओए ओए मरते मरते लिख जाऊंगा गवर्नमेंट को लेटर जी LETTER
1: जय। ये गीत फिल्म बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म से था, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज थी और जॉनी वॉकर पर फिल्म है गया ये गीत था। श्रोताओ अजीज कश्मीरी के बोल थे, सुरीले सफर के बहाने याद आ गई, साइकिल कभी नहीं होती पुरानी, भविष्य इसका उज्जवल, रंग बिरंगे रूप इसके आधुनिकता से, चपल चंचल सेहत को संवार कर प्रदूषण को रोके बन गई है सदा सफल, बचपन में सिखाती जवानी में हंसाती, आगे चलकर काम में आती, अदृश्य काल चक्र को यादों का अनुपम कारवां बनाती। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं, आज साइकिल की सवारी की जाएगी और साइकिल की सवारी सबसे सस्ती और स्वास्थ्यवर्धक है, इससे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। आजकल कई तरह की साइकिलें आ रही हैं, सस्ती महंगी और रंग बिरंगी, और गीत भी इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब से होश संभाला तब से घर में साइकिल को देखता आ रहा हूँ, पिताजी साइकिल से ही ड्यूटी जाया करते थे, मेरी उम्र 10 वर्ष की थी तो मेरे बड़े भाइयों की शादी एक साथ हुई तो उन्हें शादी में 2 साइकिल मिली, बस मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, तब से गिरते पड़ते कितनी बार चोट खाई और अंततः साइकिल सीख ही गया। साइकिल चलाने का इतना जुनून सवार था कि 10वीं कक्षा में अपने दोस्त को बिठाकर पूरी दिल्ली को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाला एकमात्र रिंग रोड साइकिल दौड़ाकर मात्र 3 घंटे में नाप दिया। तो इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। और साइकिल जब हम लोग चलाते थे श्रोताओ तो कई बार ऐसा होता था कि अपने दोस्तों को लिए बगैर साइकिल नहीं चलाते थे, और फिर घंटी बजाना, उन्हें बुलाना और साथ में जाना, ऐसे भी कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। कुछ अभिनेता और अभिनेत्री जो दिखाए जाते हैं पर्दे पर साइकिल चलाते हुए, इनमें से कौन आपको अच्छे लगते हैं, यानी साइकिल चलाते हुए कौन से अभिनेता या अभिनेत्री आपको बड़े स्टाइलिश लगते हैं। ये अजब सी स्टाइल है धर्मेंद्र जी की, ऐसी साइकिल आपने चलाई है क्या?

ये गजब तरीके से धर्मेंद्र जी ने साइकिल चलाई है श्रोताओं, और ऐसी साइकिल यानी उल्टी साइकिल बहुत सारे लोग चलाया करते थे, तो क्या आपने भी कभी चलाई है? तो आप जरूर लिखें। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म औरत का जो गीत हमने आपको सुनवाया नाजिमा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मैंने भी कैची साइकिल चलाई है। और एक और श्रोता लिखती हैं, साइकिल भी क्या चीज़ थी बचपन, क्या आज भी साइकिल को लेकर उतनी ही पॉजिटिव हूँ जितना आपने बचपन में थी। जब पहली बार साइकिल पर बैठे थे तो लगता था कि साइकिल नहीं हवाई जहाज है, और इस पर बैठकर चाहे जहां तक उड़ सकते हैं। वो चैन के दिन जब साइकिल से सारा शहर नाप लेते थे, आज भी मेरे पास एक गुलाबी साइकिल है। साइकिल हमारी दोस्त ही नहीं, ये तो पर्यावरण की भी सच्ची साथी है। और साइकिल चलाइए और अपनी और प्रकृति की सेहत बनाइए। एक और श्रोता लिखती हैं कि कुछ चीजें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादों की अलमारी में और तहजीब से रख दी जाती हैं। मेरी पहली साइकिल भी कुछ ऐसी ही थी, उसने मुझे रास्तों से ज्यादा जिंदगी का संतुलन सिखाया था। गिरना भी उसी ने सिखाया, और उठकर फिर चलना पढ़ना भी। और पापा के हाथ पीछे, पापा का हाथ था सामने खुली हुई गली। और कुछ इन्होंने अपनी बात भी लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ताऊ दादा यदि सबने नौकरी अधिकतर साइकिल के द्वारा की है और सेवा उपरांत भी उपयोग किया है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज तक साइकिल से जाके पढ़ाई हम लोगों ने की, और बाइक भी थी। साइकिल से घूमना जाना आज भी जारी है, और अब पापा नहीं चला रहे, फिर भी हम लोग उन्हें बताते हैं साइकिल जा रहे हैं, वो ऐसे सेफ समझते हैं। यानी कि इन्होंने कहा होगा कि शायद हम साइकिल से जा रहे हैं तो वो सेफ समझते हैं, और अच्छी बात है ये।

0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, शहरों में भी और गांवों में भी। भले बाइक से फराटा लोग आज दिखाते हैं, लेकिन पेट्रोल की महंगाई ने तमाम लोगों को सिखा दिया कि 4-5 किलोमीटर तक जाना है तो साइकिल ही ठीक है। हम आज भी इस उम्र में साइकिल चलाते हैं, जो एक तरह का व्यायाम कराती है और पैसे भी बचाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे जमाने में लकड़ी की गुड़गुड़ी चलाई जाती थी, नाना जी ने दी थी, फिर भाई हुआ तो बाबा ने 3 चक्के वाली साइकिल खरीदी। अब नवासे के जमाने में चलना क्या सीखेंगे, तो साइकिल खरीदी, अब तो स्कूटर की मांग है।
1: सूरज बैठा अपनी गठड़ी को।

मनोज कुमार शोर फिल्म में 7 दिन तक साइकिल चलाते हैं श्रोता, ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखाया गया है। आप सुन रहे थे ये गीत मन्नडे, महेंद्र कपूर और श्यामा चित्तर की आवाज में। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी वाली 3 पहिए की साइकिल पर हम तो 2 बहनों ने चलाना सीखा, पर अब वो नहीं दिखती। मेरी पहली साइकिल काले रंग की थी, स्कूल जाते थे भीगते पानी में और धूप में कोहरे में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बच्चे के लिए लकड़ी की 3 पहिया साइकिल को हिंदी में गडूला और मराठी में पांगुल गाड़ी कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जॉनी वॉकर जो गीत हमने आपको सुनवाया था, इन्होंने ही लिखा है कि जॉनी वॉकर साइकिल पर नजर आते हैं और ये मुकाबला करते हैं कलकत्ता की ट्राम से। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैंने साइकिल चलाना सीखने की बहुत कोशिश की पर सीख नहीं पाई, पार्क में जिम में है और वहां मैं जाती हूँ और चलाती हूँ साइकिल। आपको ये अदाकार और फिल्म बतानी है और संगीतकार बताने हैं श्रोताओं।

श्रोताओ, ऐसा शायद ही कोई हो जो साइकिल चलाते चलाते कुछ गुनगुनाता ना हो, और ये आदत शायद वहीं से पड़ती है। आज भी जब कभी हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो गुनगुनाते हैं। आप कौन सा गीत गुनगुनाते थे जब साइकिल चलाते थे?

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत था, देवानंद और मुमताज पर फिल्माया गया, नीरज के बोल थे, सचिन देव वर्मन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ और साइकिल से जो है सुबह निकलता हूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसा इनका लिखना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर यूको पार्क जाता हूँ, फिर वहाँ मॉर्निंग वॉक कर साइकिल से ही वापस लौटता हूँ। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है जिससे आपने तरोताजा अपने आप को महसूस करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल से लौटते वक्त साइकिल पर तीन तीन दोस्त बैठकर आते थे, अन्य दोस्तों के साथ रेसिंग भी करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लीडर में दिलीप कुमार ने जो उल्टी साइकिल दौड़ाई है उसकी बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कॉलेज टूर पर इंदौर गए, 1989 की यादें ताजा हुई।

हसन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं, सहरा बानो नजर आती हैं। श्रोताओ, आपके तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके तमाम कमेंट्स के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती के संग सुरीला सफर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें सिर दर्द की। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वो दर्द जो कि हमारे सिर के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग कारणों से होता है। आमतौर पर सर्दी, जुकाम, ठंड, एसिडिटी, मौसम के बदलने का असर सिर दर्द के रूप में सामने आता है। इसके कारण कई बार हमें बिल्कुल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द के कई कारण भी हो सकते हैं और उसी के अनुसार उनका इलाज भी होता है, पर आम तौर पर सिर दर्द के दौरान सीधा सा उपाय पेय पदार्थों का सेवन और स्क्रीन से दूरी ही है। बस आंखें बंद करके लेट जाइए और हो सके तो किसी से सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश भी करवा सकते हैं, जो कि आपके सिर दर्द से आपको राहत दिलाने में कारगर होगा।

सिर दर्द के स्वास्थ्य संबंधी कारणों की बात तो हमने की, लेकिन कुछ सिर दर्द अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ आदतें और कुछ लोग भी कई बार सिर दर्द की श्रेणी में आते हैं। सिर दर्द कहलाने वाली आदतों में शुमार हैं चुगली, बेवजह के सवाल जवाब या नकारात्मकता का पिटारा, जो कई बार हमें सामान्य नहीं रहने देता। वैसे ही कुछ लोगों की फितरत भी इस तरह की होती है जो हमें कई बार सिर दर्द की हद तक ही परेशान कर देती है। इस तरह के सिर दर्द की खासियत या कहें मुसीबत ये होती है कि इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ना तो कोई चंपी काम आती है और ना ही कोई दवा। इनसे बचने का सीधा सा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को देखते ही हो जाइए 9-2-11, वरना आप भी यही कहेंगे।

जैसे कुछ आदतें और लोग सिरदर्द होते हैं, उसी तरह से कई काम भी हमें सिरदर्द ही लगते हैं। जैसे बैंक, ऑफिस या स्कूल में तरह तरह के कामों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना, किसी के बड़े से खत का जवाब देना, किसी के इत्मीनान से कहे जा रहे वॉइस मैसेज को सुनना और भी न जाने क्या क्या। सबके अपने अपने अलग सिरदर्द होते हैं, हो भी क्यों ना, सबके सिर अलग अलग हैं और उनके दर्द झेलने की क्षमता भी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सिरदर्द चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या हो किसी आदत, काम या व्यक्ति संबंधी, उससे जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए जीवन उतना ही आनंदपूर्ण हो जाता है। जीवन में आनंद बढ़ाने और हर प्रकार के सिरदर्द को कम करने का एक कारगर उपाय है संगीत। अच्छा संगीत आपको स्वस्थ और आनंदमय रखता है। जब

हमारी यही है कामना कि आपको जीवन भर न करना पड़े किसी भी तरह के सिरदर्द का सामना। और इसी के साथ आज की त्रिवेणी संपन्न होती है। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फोरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: और ज्यादा खबरों के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक

0: 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। FM गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई FM गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सवालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सवालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
7: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
8: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म थी मेरी सूरत तेरी आंखें।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत था हसरत जयपुरी के बोल, संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: उड़ जा काले कावा
1: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया ये दुगाना आपने सुना गुमराह फिल्म से। साहिल धानवी के बोलों को शुरू में ढाला रवि ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे संगीता श्रीवास्तव के साथ।

हसरत जयपुरी के बोलों को सुनो में ढाला शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म थी प्यार ही प्यार। फिल्म पेइंग गेस्ट किशोर कुमार की आवाज़।

आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज ये तो गाना मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर का गाया फिल्म अनजाना से, और यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर मिलना हो रहा है।
2: ऐसे तो हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मिलना जो होता है ना वो यहाँ पे ही होता है।
1: और साथ में जब बात करना होता है, विषय बताने होते हैं, तो भी बड़ा मजा आता है। जैसे कि भाई देखो, आज का जो विषय है मुहावरों की दुनिया, तो मुंह में पानी आना, तो इस पर भाई आप लोग अपनी अपनी छोटी छोटी सी बातें लिखिए कि
2: आपको क्या देख के मुंह में पानी आ जाता है।
1: तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है ना। और देखो, हल्की फुल्की बातें में हम करेंगे मुफ्त का लालच,
2: यानी कि एक के साथ अगर हमें एक फ्री मिल रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ले लेते हैं।
1: ये सब चीजें देखो, कपड़े पहनने, वस्तुओं से लेकर के कुछ खाने पीने पर भी
2: होता है। बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो बस अपनी अपनी यादें ताजा कीजिए। और सखी विशेष में क्या लेकर के आई हूँ आरती?
2: आज हम सखी विशेष में हम बात करेंगे छाया नंजप्पा जी के बारे में, जो कि संस्थापक है नेक्टर फ्रेश की, उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आज हम बात करेंगे दैनिक आहार और पोषण, हमारी थाली में पोषण कितना होता है और जो चीजें हमारे नुकसान करने वाली हैं वो कितनी होती हैं। हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं दैनिक रूप से, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए, है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो ताजा, बासी, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम भाई चलेंगे गीत की ओर।
2: संगीत के बिना तो सब बातें अधूरी हैं।

0: ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी थाली में कैसा खाना हो जो विटामिन प्रोटीन मिनरल से भरा हुआ हो, यानी कि दैनिक आहार और जो पोषण है उसमें हमें एक समय में नाश्ते में अच्छा खासा मिल जाए, फिर लंच में मिल जाए, जो हम दोपहर का भोजन जिसे कहते हैं उसमें अच्छा खाना हो, और रात का खाना। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर हम गृहिणियों को, और तुमको भी याद रखना पड़ता है ना कि चटपटा कितना खाना है, सादा कितना खाना है।
1: अच्छा, चटपटा मुझे ध्यान रखना है।
0: चटपटा तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए तुम याद रखो, है ना। और अक्सर हम खाना तो पेट भरने के लिए खाते हैं ना, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा भोजन हमारे शरीर को सही पोषण भी दे रहा है कि नहीं, है ना। आप पेट भरने के लिए ही ना खाएं, जीने के लिए भी खाकर सोचें, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और क्या कहते हैं?
1: और कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का निवास होता है, और स्वस्थ शरीर की शुरुआत होती है एक संतुलित और पौष्टिक आहार से। और पोषण का अर्थ ही होता है कि भोजन के माध्यम से शरीर को आवश्यक तत्व मिलने जितने भी हो सके, और जिससे कि हमें ऊर्जा मिल सके और शरीर का विकास हो, और हम तभी तो स्वस्थ रह पाएंगे।
0: बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे, और क्योंकि हमारा जो रोज का भोजन होता है उसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी, जैसे हमने अभी कहा ही था कि प्रोटीन विटामिन से तो कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा देता है, तो वो भी होना चाहिए। और प्रोटीन डाइट जिसे कहते हैं, प्रोटीन जो शरीर की वृद्धि और उत्कों की देखभाल करने में मदद करता है, और वसा जो ऊर्जा का एक स्रोत है और शरीर के लिए वो बहुत आवश्यक भी है, तो विटामिन और खनिज जो शरीर के सामान्य कार्यों और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो अपने खाने में उन चीजों को देखें। और जो हमारी सब्जियां वगैरह होती हैं, जो भी अनाज है, तो आप चाहे तो एक चार्ट बना करके किचन में चिपका लीजिए कि भाई इसमें ये चीज पाया जाता है, तो हम बदल बदल की चीज बनाएंगे।
1: बिल्कुल, जितनी रंग बिरंगी आपकी थाली होगी ना हमारी, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो क्योंकि वो सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं बल्कि पौष्टिक और विविध भोजन जरूरी होता है, कि एक ही तरीके का खाना खाकर हम वैसे भी ऊब जाते हैं, तो हमारी थाली जितनी ज्यादा रंग बिरंगी होगी उतना ही हमें खाने में अच्छा लगेगा। और जिसमें की होनी चाहिए क्या क्या चीजें, हरी सब्जियां, मौसमी फल होने चाहिए, दालें होनी चाहिए, अनाज और बहुत से पौष्टिक जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अपनी दिनचर्या का हमें हिस्सा बनाना चाहिए। खासकर दालें तो बहुत जरूर होनी चाहिए, चाहे बच्चों चाहे बड़े हो, सबको दाल तो खानी ही चाहिए।
0: बिल्कुल। और सुबह का नाश्ता भी बहुत जरूरी होता है, वो भी समय से करने के लिए, क्योंकि रात भर हम जो रात में खाकर सोते हैं सुबह तक तो वो हजम हो जाता है, लेकिन नाश्ता ही देर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो उस समय आप नाश्ता एक पौष्टिक लीजिए, पोहा, उपमा, ये सब ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना, चीला वगैरह में मूंग का चीला ले सकते हैं। और दोपहर के भोजन में अनाज, दाल जैसा तुमने कहा है, और दही के साथ साथ प्रोटीन और अन्य सब्जियां भी शामिल करें। और शाम को जरूरत से ज्यादा तले भुने या अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों के बजाय पौष्टिक विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि हम काम करके थक जाते हैं, तो हमें खाना खा के रात को सोना भी है, तो जब हम तेल वाला मिर्च मसाले का खाएंगे तो हमें तकलीफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
1: और वैसे भी शाम के समय थोड़ा सा हमारी जो पाचन क्रिया होती है थोड़ी धीमी हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें बहुत ही हल्का और सुपाच्य खाना खाना चाहिए। और जैसे सैलेड हम खा सकते, सलाद खा सकते हैं, है ना, या कोई हरी या सब्जी कोई अपने हमने हरी बनाई, हरी सब्जी बना रखी तो उसको खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरीके की चीजें हमें खानी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और इसके अलावा हमारे शरीर के लिए पानी भी बहुत जरूरी, तो दिन भर पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी होता है।
0: ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम 7-8 गिलास पानी आप जरूर पिए, कि जिससे आपके अंदर की शरीर की जो गंदगी है वो बाहर
1: घूट कर पानी पीजिए। और जरूरी नहीं कि आप एकदम से बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि फिर हमारे शरीर को उसको भी करने में बहुत टाइम लगेगा, परेशानी होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके पीजिए।
0: और पानी जब भी पिए ना तो बैठ कर पिए, धीरे धीरे पिए। तो फिलहाल तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

झूमती है, लहरें बार बार किनारे को क्यों झूमती है।

0: तो अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है आरती सखी
1: सखी
0: सहेली।
1: सहेली
0: तो हमारे साथी जो लगे उन्होंने क्या क्या संदेश लिखकर भेजे हैं।
1: बहुत कुछ लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वही शरीर को स्वस्थ बनाता है। कभी कभार एक आध बार चल जाता है। मैं भी सुबह की शुरुआत अपनी जो वैसी चाय होती है उससे करती हूँ, और दिन में दाल चावल हरी सब्जी रोटी, और रात में सब्जी डालकर ज्वार की दलिया खाती हूँ, और कभी कभार तीज त्योहार पर पूरी सब्जी खा लेती हूँ।
0: क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि दैनिक आहार और पोषण, रोजमर्रा के जो हम खाना खाते हैं उसमें पोषण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे सेहत को एक अच्छी गति प्रदान करता है। उसमें पोषण हम किस तरीके से ला सकते हैं? दैनिक आहार में पोषण लाने के लिए हर तरीके की चीज खाएं, चावल रोटी, लेकिन कहते हैं चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसीलिए चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना है। और अपने आहार में अनाज, हर प्रकार की दालें, राजमा, चना, मूंग, इस तरह की चीजें आप शामिल कर सकते हैं। दूध, दही ले, और जो मतलब जिस तरह के निरामिष या शामिष भोजन वैसे करते हैं तो वो करें आप। और जंक फूड और तली चीजों से दूर रहें, और घर में ही पोषक तत्वों से भरा स्वादिष्ट खाना जो बनता है वो आप खा सकते हैं। मूंग का दाल का चीला है, और ऐसे सिस्टम भी आपका सही रहता है, सेहत सही रहती है। और बहुत से खाने भी आप खोज सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए, सूजी का उपमा वगैरह, चीला, ये सब खा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि दैनिक आहार

0: और पोषण में भोजन में रंग बिरंगी सब्जियां और फल आप खा सकते हैं। 8 से 10 गिलास पानी पीजिए और बहुत ज़्यादा चीनी और मैदे वाली चीज़ों से दूरी बना कर रखिए, और खाने को स्वाद के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के अनुसार खाइए।
1: बिल्कुल। और जैसे कि दैनिक आहार और पोषण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और मानसिक विकास का मुख्य आधार है, आहार है। और ये वो भोजन है और पेय है जिसे हम नियमित रूप से सेवन करते हैं। पोषण जो है ये शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया है जो हमें ऊर्जा देती है और स्वास्थ्य को बनाए रखती है। और भाई इस की जानकारी हम एक दूसरे से ले सकते हैं, घर में जो परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं ना, आरती, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी बताते हैं कि देखो ये चीज खाओ, गर्मी में ऐसी चीजें खाओ कि आपका तन में शीतलता बनी रहे। और जैसे कि बारिश के समय है तो इस तरह की कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें खाओ कि आपको थोड़ी सी गर्मी भी रहे, और सर्दी में तो कहा ही जाता है कि गर्म पदार्थ खाने हैं। तो इन सब चीजों का आप बड़े बूढ़ों से भी आप सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी किताबें भी आ गई हैं, आप सोशल मीडिया या आप उससे भी जानकारी नेट से भी, इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो
0: बिल्कुल। और वैसे भी अगर हम बाहर की चीजें खाते हैं, या जैसे कि अपने घर का खाना छोड़कर हम बाहर का खाना खाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किया हुआ जब तेल भी उसमें उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें बन चुकी होती हैं और लगातार वो तेल खौल रहा होता है, गर्म हो रहा होता है,
1: बिल्कुल
0: तो वो तो आपको नुकसान पहुंचाने ही वाला है वैसे भी।
1: बिल्कुल
0: और हम जो भी चीजें बाहर की खाते हैं उसमें कितना तेल, कितना नमक तेज है, या कितना तेल बहुत ज्यादा है, या कितना मिर्ची तेज है, मतलब वो जो चीजें हैं, मसाले हैं, वो कौन से हिसाब से डाले गए हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि हम बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम खाएं, अपने घर पे ही आप अच्छा ताजा भोजन खाएं, और सुपाच्य अच्छा हो, जो हल्का हो, जो
1: बिल्कुल
0: पचने में आसान हो, ऐसा भोजन खाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और खुला जब भी खाना किचन में बने, आप बना के रखती हैं, तो उसको ढक कर रखें, कभी भी खुला मत रखें। और हो सके तो आप बिल्कुल बासी खाने को मतलब ना ही खाएं तो अच्छा है, ताजा ही भोजन का जैसा तुमने कहा ही है। और बच्चों को भी यही सिखाएं कि भाई आप भी ताजा खाना खाइए, हम बना रही है नहीं कि अभी नहीं खाएंगे तभी नहीं खाएंगे। बच्चे करते ना अक्सर ऐसा कि
0: बिल्कुल।
1: नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, अभी पेट भरा हुआ है, या कोई भी बहाने कर देंगे कि अब मोबाइल छोड़ के उन्हें खाना खाने के लिए बोल
0: हाँ
1: दिया गया है ना। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखें। और साथ में जब खाना खाने के लिए आप लोग बैठते हैं, खाना खाने सब लोग, हम सभी लोग बैठते हैं, तो उस समय इन सब चीजों से को अपने आप से दूर कर दें, मोबाइल
0: बिल्कुल,
1: वगैरह, कि सिर्फ खाने पर आप ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं।
0: वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो जब हम अपने हाथों से खाना अपने मुंह तक पहुंचाते हैं, वो जो खाना होता है ना, वो एक अलग सा रिश्ता बनाता है, हमारे हाथों से हमारे
1: बिल्कुल
0: मुंह तक आता है खाना, तो उसकी वजह से ना हमारे शरीर पे बहुत बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा, जो बनाता भी है ना, 1 घंटे 2 घंटे करके मेहनत करके जो हमारी सखियां बहनें सब बनाते हैं हम लोग, तो उनकी तारीफ करने के लिए भी आप सोचिए ना कि अब जब स्वाद से
0: बिल्कुल
1: खाएंगे तभी तो आप तारीफ कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: अगर आपका ध्यान मोबाइल में लगा है
0: हाँ,
1: या टीवी में लगा है तो आप तो खाने का स्वाद
0: पता
1: ही
0: ही
1: नहीं
0: नहीं
1: ले रहे
0: चलेगा
1: हैं,
0: हम
1: पता
0: क्या
1: ही नहीं
0: खा
1: चल
0: रहे
1: रहा
0: हैं।
1: है ना। तो वो चीज भी बहुत ध्यान रखना है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वो शरीर को स्वस्थ बनाता है, कभी कभार एक आध बार चल जाता है, मैं भी सुबह की शुरुआत मतलब हर्बल चाय से करती हूँ। तो ये देखो ये चीज बहुत अच्छी बात है, और तुमने भी इस को बताया ही था आगे इसी संदेश को, तो बहुत अच्छी सी बात है कि इस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपना। और हम ध्यान रख लेते हैं बातों के बीच में।
0: एक गीत का

0: तो भाई देखो आरती, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो भाई आज कौन सी सखी विशेष की तुम बात करने वाली हो?
1: मैं हम बात करने वाले हैं आज छाया नंजप्पा जी की।
0: जी
1: तो छाया नंजप्पा राजप्पा की, जो कि भारत की जानी मानी महिला उद्यमी में से शामिल हैं, और इनका जन्म हुआ था दक्षिण कूर्ग नलकरी में। उनका बचपन अपेक्षाकृत पारंपरिक और सुरक्षित वातावरण में बीता था। उन्होंने मैसूर में अपनी शिक्षा पूरी की। हालांकि उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो आगे बहुत समय तक जारी नहीं रह सकी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा और पत्राचार के माध्यम से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया।
0: छाया के जीवन में एक कठिन दौर तब आया जब उनके पिता का निधन हुआ और बाद में उनका विवाह भी असफल रहा, और इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और उनका उद्देश्य केवल अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं था, बल्कि अपने गृह क्षेत्र के लोगों, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा करना भी था।
1: बिल्कुल, छाया ने जब अपनी शुरुआत करी थी अपने उद्यम की, तो उनके पास ना तो पारिवारिक व्यवसाय की पृष्ठभूमि थी और ना ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कोई लंबा अनुभव। उन्होंने शहद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CBRTI पुणे में प्रशिक्षण लिया। इसी दौरान उन्हें मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी भी मिली,
0: और उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और धीरे धीरे शहद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का व्यवसाय विकसित किया। उनके व्यवसाय की शुरुआत विशेष रूप से शहद और कृषि आधारित खाद्य उत्पादों से हुई, और कंपनी की शुरुआत में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIC समर्थित ग्रामीण उद्यम के रूप में विकसित किया गया।
1: उनकी कंपनी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बनाना है, खाद्य उत्पाद बनाना है। बाद में कंपनी ने अपने उत्पादों का विस्तार किया, जिसमें शहद, जैम, सॉस, चिया सीड्स, प्राकृतिक सिरका, सेब का सिरका, कॉफी और मसालों जैसे उत्पाद हैं। छाया के उद्यम में का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है ग्रामीण रोजगार और छोटे किसानों और सभी समुदायों को उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करके आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने वन समुदायों से प्राप्त शहद की खरीद और उसे बाजार तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। उनका मॉडल किसानों, शहद संग्रह करने वाले समुदायों, खाद्य उपयोग और उपभोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने पर केंद्रित रहा है, और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कम शिक्षित और कम प्रशिक्षित लोगों को काम के दौरान

0: प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि उनकी जो उद्यमिता है उसको सामाजिक उद्यमिता का उदाहरण भी माना जाता है। उनकी कंपनी को वी कनेक्ट इंटरनेशनल के उनको के विमेन ओन्ड लोगों का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला ब्रांड बताया गया है। ये पहचान महिला उद्यमिता और महिला स्वामित्व वाले व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने का के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने धीरे धीरे बड़े होटल समूहों, खुदरा संस्थानों और आयुर्वेद और फार्मा क्षेत्र के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाई। और उनकी कंपनी ने केवल कच्चे शहद की बिक्री तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया। और छाया ने भारतीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले पैक किए गए शहद और अन्य खाद्य उत्पादों को स्थापित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।
1: बिल्कुल, और छाया नंजप्पा नेशनल बी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी रही हैं और केवीआईसी के हनी मिशन की नेशनल लेवल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी रही हैं। वो एसोसिएशन ऑफ बिजनेस वीमेन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारत की कंट्री प्रेसिडेंट और कर्नाटक की स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी सूचीबद्ध हैं।
0: और देखो, इनके बहुत सारे काम हैं, इन्होंने मतलब इस तरह से जो किया है वो सबके लिए एक मिसाल है। और हम लोग इनके बारे में और भी बातें करेंगे आरती, लेकिन अभी एक समय हो रहा है, धीरे धीरे एक अंतराल का समय हो रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर हम इनके बारे में आगे बातें करेंगे।

0: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0152-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: बिल्कुल, और साथ ही छाया नंजप्पा जी ने पहली बार शहद और जैम के लिए पॉलीप्रोपलाइन ब्लिस्टर चिपलेट्स और तकनीक का उपयोग नी ब्रांड्स के रूप में किया था अपने। इनके ब्रांड ने भारत में कई विदेशी और 20 साल पुराने स्थापित ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया था। आज इनके उत्पाद भारत के प्रमुख प्रीमियम होटल में भी सप्लाई किए जाते हैं। ये हमारा एक संदेश मिला है हमें
4: श्रोता ने। और आरती हमारे साथी और लिखते हैं कि हर बार जगह बदलने पर लाखों का नुकसान होता था। इसके अलावा उपकरणों की टूट फूट के कारण कुशल कर्मचारी कम हो जाते थे और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता था। इसलिए हमेशा आशावादी रहने वाली छाया कहती हैं, हर बार जब हम नए लोगों को प्रशिक्षण देते हैं तो उनके साथ मेरे संबंध और भी मजबूत होते जाते हैं। बहुत सही बात है, जब हम इस तरह से किसी को भी सिखाना चाहते हैं ना, तो वो एक टीम बन जाती है और टीम के अंदर एक आपसी जो सद्भाव होता है, एकता होती है, अनुशासन होता है और आप सबका सहयोग होता है, तो उससे ही वो काम अच्छा निखर के आता है।
3: बिल्कुल, और इस समय हमें अपने

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो भी आरती, अब हम लोग किस विषय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं?
5: अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मुफ्त की ओर।
4: अच्छा, सबसे प्यारा विषय लगता है तुम्हारा
5: मुफ्त की ओर। कई बार होता है ना कि हम लोग कभी कभी लालच में भी जाते हैं, अच्छा सेल लगी है, अच्छा मुफ्त मिल रहा है सामान, चलो चलो ले लेते हैं, कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी। तो ये जो लालच होता है ना हमारा, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
4: ओवर बजट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और हम लेते चले जाते हैं सामान, ये नहीं सोचते कि हमारे घर में स्टोर जमा हो जाएगा, अलमारी भर जाएगी, है ना।
5: इससे बस घर भी तो घर में भी सब सामान इतना ज्यादा जमा हो जाता है ना, जिसको इसका प्रयोग नहीं, हमारे पास जब उसका हमें उपयोग नहीं करना है तो हम जबरदस्ती में उसको भरते ही तो हैं।
4: बिल्कुल।
5: और दूसरी चीज है, कभी कभी खाने में जब हम ये काम करते हैं ना कि इसके साथ में ये मुफ्त है या ये हम इतना खा सकते हैं, ये थाली मुफ्त है या बड़ी थाली लेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे।
4: और कई बार क्या होता है कि हम उसके चक्कर में ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं, फिर अंत में होता है कि भाई इसको पैक कर दीजिए, हम घर ले जाएंगे। तो ये सारी

0: चीज़ें भी होती, तो मुफ्त का लालच जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही होता है ना कि मुफ्त मिले तो बुरा क्या है, यही सोचकर कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं जिनकी वास्तव में हमें आवश्यकता भी नहीं होती है। और मुफ्त शब्द सुनते ही मन में बड़ा उत्साह सा जाग उठता है और हम बिना सोचे समझे उस वस्तु या अवसर को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही मुफ्त का लालच कई बार नुकसान का कारण बन जाता है।
1: बिल्कुल, बाजार में जो आकर्षक ऑफर रहते हैं, फ्री गिफ्ट्स रहते हैं, एक के साथ एक मुफ्त जैसी योजनाएं रहती हैं, वो बहुत ज्यादा लुभावनी लगती हैं और कई बार हम जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, और क्योंकि कुछ मुफ्त मिल रहा होता है साथ में, और बाद में पता चलता है कि जिस चीज को पाने के लिए इतना खर्च किया उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में भी मुफ्त के लालच से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इस समय नकली इनाम, आकर्षक ऑफर और संदिग्ध संदेश लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी मुफ्त चीज के पीछे भागने से पहले उसकी सच्चाई और अपनी आवश्यकता को समझना चाहिए।
0: बिल्कुल, और कई बार हम कहीं दुकान पर लेने जाते हैं आरती, तो वहां पर एक दिखाएंगे कि आप स्क्रैच कार्ड है, आप इसको इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रैच कर दीजिए तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो भाई वो चीज कभी ना करें, लालच में ना पड़े। और कहा भी गया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती
1: बिल्कुल।
0: और हर मुफ्त मिलने वाली वस्तु वास्तव में लाभदायक नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम लालच के बजाय विवेक से निर्णय लें, क्योंकि कई बार मुफ्त का लालच हमें इतना महंगा पड़ जाता है आरती कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है।
1: बिल्कुल
0: और जो चीज बिना सोचे समझे मुफ्त में मिल रही हो उसके पीछे छिपी कीमत को पहचानना भी बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी है।
0: है ना। और हमारे साथी क्या लिखते हैं?
1: हाँ, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर हमें हल्की फुल्की मुश्किलों में डाल देता है, कभी कभी भारी मुश्किल में भी डाल देता है। विज्ञापन दाता और दुकानदार हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और मुफ्त की हर चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है, चाहे वो आपका कीमती समय हो, फोन का डेटा हो, या घर में बढ़ने वाला कबाड़। इसलिए अगली बार जब भी फ्री का बोर्ड देखें तो खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? बहुत सही बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मुफ्त का लालच इस विषय की सबसे बड़ी खूबी इसका आम जीवन से जुड़ा होना है। हमारे साथी लिखते हैं कि लोग 100 रुपए की मुफ्त चीज पाने के लिए 500 का ऐसा सामान खरीद लाते हैं जिसकी उन्हें कभी जरूरत ही नहीं होती। घर की अलमारियों में बंद पड़ी बेकार वस्तुएं इस मुफ्त के लालच का जीता जागता सबूत है, और ये हमारे खोखले प्रदर्शन और दिखावे की संस्कृति पर करारा प्रहार भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू लेखन में इस बात का गहरा अर्थ मिलता है कि मुफ्त केवल एक ऑफर नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि मुफ्त का लालच देकर किसी भी फालतू चीज को बेचा जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: ग्राहक को लगता है कि उसने पैसे बचा लिए हैं, जबकि असल में वो अपनी जेब को वो ढीला कर चुका होता है।
1: बिल्कुल
0: कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे मान लो तवे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम गए नहीं, हमें तो कुछ दूसरी ब्रांड का चाहिए, वो ले आए, तो बेचारे दो दो तवे जो ऑलरेडी आपके उसमें रैक में रखे थे वो अफसोस मना रहे हैं कि कब मुझे चढ़ाओगे, कब मुझे गर्म करोगे,
1: उनका तो
0: है ना,
1: मौका ही नहीं पाता
0: मौका ही
1: फिर।
0: नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि घर में जितनी चीजें हैं अगर एक है तो उसकी बड़ी कद्र होगी, बहुत ज्यादा चीजें होती तो किसी ना किसी की तो बेकद्री हो ही जाती
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: और हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा कमजोर पहलू है जिस पर दुनिया का पूरा बाजार टिका हुआ है। ये विषय आज के उपभोक्तावादी समाज का कड़वा सच दिखाता है, जिसे बेहद हल्के फुल्के और हास्यास्पद शैली में आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक के साथ एक मुफ्त या मुफ्त डिलीवरी जैसे शब्द इंसानी दिमाग पर किसी जादू की तरह काम करते हैं। और इसीलिए कहा गया कि मुफ्त का शब्द सुनते ही इंसान की तार्किक बुद्धि काम करना बंद कर देती, क्योंकि जहां हमने सुना मुफ्त है बस फिर कुछ सोचते नहीं है
0: और
1: उसके
0: हम
1: आगे।
0: जो महिलाएं ना, माफ कीजिएगा, हमने अपने को भी शामिल किया, हम लोग मुफ्त के चक्कर में चले जाते हैं कि भाई वो साड़ी वहां पे एक के साथ एक मिल रही है, ले लेते हैं, या कुछ भी कान की चीजें हुई, झुमका शुमका चूड़ी कंगन, ऐसी चीजें पे हम लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं, यानी चमक दमक में बस
1: खो
0: मिलते
1: जाते
0: ही
1: हैं
0: हो खो जाते हैं। फिलहाल तो हम खोते नहीं है, हम सुनते हैं एक
1: एक
0: गीत।
1: गीत।

0: तो भाई आरती देखो, मुंह में पानी आना, अब सोचो अगर हमने कोई नाम ले लिए तो तुम्हारे मुंह में क्या पानी आएगा क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो तुरंत आ जाता है जहां समोसे की
0: जैसे देख
1: बात
0: लो,
1: चलती है।
0: समोसा तो छोड़ो, इमली, कैफा, बेर,
1: सच्ची में
0: कमरक,
1: बस
0: है ना, और
1: करो।
0: चूरन, पानी के
1: बस
0: बताशे।
1: बस
0: तो तुम्हारे तो पानी आ गया, मुझे तो सामने दिख रहा है, लेकिन हमारे जो
1: बस
0: साथी हैं, सखियां
1: बात
0: हैं, तो वो बताएं कि ये सब चीज जो मैंने नाम लिया है, सबने
1: हुआ।
0: आसपास देखी भी है, तो खाई भी है ना, अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, तो किसके किसके मुंह में पानी आया ये बताएं, है ना। और
1: बिल्कुल।
0: हमारे साथी लिखते, मुंह में पानी आना हिंदी साहित्य में मुहावरों का एक विशेष स्थान है। ये हमारी भाषा को सुंदर, सजीव और असरदार बनाते हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय और मजेदार मुहावरा है, मुंह में पानी आना। और इस मुहावरे का सीधा संबंध हमारी जीभ, स्वाद और मन की इच्छा से है। और
1: बिल्कुल
0: किसी भी पार्टी समारोह में, शादी ब्याह में जाते हैं, या फिर वो जमाना याद आता है पत्तल पे जो खाना परोसा जाता था, पंगत में हम बैठते थे, तो वहां पर सब चीजें देख के तो मुंह में पानी आता था। रायता आ गया या रसगुल्ला आ गया तो फिर पूछो मत, है ना। तो चलो आगे हमारे साथी क्या लिखते हैं।
1: हाँ, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ है किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर या उसके बारे में सोचकर मन ललचा जाना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को संदेश मिलता है और मुंह में लार बनने लगती है। इसी स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया को भाषा में एक खूबसूरत मुहावरे का रूप दिया गया है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस मुहावरे का प्रयोग अक्सर करते हैं
0: बिल्कुल,
1: कि
0: देखते हैं
1: आपके
0: कि
1: समाज चीज को देखिए, इतना अच्छा आपने रेसिपी बनाई है कि एकदम मुंह में पानी आ गया। नहीं
0: या बगल वाला कुछ बना रहा हो, उसकी महक दूसरे के उसमें घुस जाए, घर में इसकी नाक में वो सुगंध लेके, आप भाभी जी आपने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे तो लग रहा था कि बस खाने को मिल जाए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया था। ऐसी बातें भी होती है। और हमारे साथ ही लिखते हैं, मुंह में पानी आना मुहावरा हमारी सहज मानवीय प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अच्छी चीज

0: को देखकर उसका मन मचल ही जाता है। और ये मुहावरा हमारी आम बोलचाल को सरल, रोचक और जीवंत भी बनाता है।
1: बिल्कुल। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये हिंदी भाषा का बहुत ही अच्छा मुहावरा है और इसका संबंध हमारे खाने पीने की इच्छाओं से है। और साथ ही इसके अभी इन्होंने पूरी लिखा हुआ ही चीजें लिखी हुई हैं कि किसी भी चीज के बारे में हम देखते हैं या सोचते हैं, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, मिठाई या अचार, इनको देख के हमारा जो दिमाग है वो प्रतिक्रिया करता है और तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है।
0: भाई देखो, ये चाट पकौड़े ये सब जब जाते हैं ना मेले ठेले में, जिसे कहते हैं
1: हाँ
0: बाजार में, तो ये सब चीजें देख के तो बिल्कुल पानी आना स्वाभाविक ही होता है। और मुंह में पानी आना ये मुहावरा लालच या इच्छा जैसी अमूर्त भावनाओं को एक शारीरिक क्रिया के माध्यम से बेहद सरलता से व्यक्त करता है। इसका प्रयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है, किसी भी आकर्षक वस्तु, धन या अवसर को देकर पैदा होने वाले लालच के लिए इसका खुलकर प्रयोग होता है। सरल शब्दों के कारण ये आम बोलचाल से लेकर साहित्यिक रचनाओं तक में समान रूप से बिल्कुल फिट बैठता है। और हम सोचते हैं यहाँ पर हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे घर में बस हमारे बड़े भाई हैं जिनके मुंह में गोल गप्पे देखकर पानी आ जाता है। गोल गप्पे देखकर फिर वो नहीं रखें, मतलब नहीं रखेंगे, अब 80 साल के हो गए हैं फिर भी नहीं मानते, मतलब रुकते नहीं होंगे,
1: हाँ
0: उनको ऐसा लगता है ना।
1: एक और साथी जो कहते हैं कि मुंह में पानी आना इस मुहावरे का अर्थ है जीभ ललचाना या किसी चीज को खाने की तीव्र इच्छा होना। अक्सर हम सबके मुंह में कुछ ना कुछ देखकर तो पानी आ ही जाता है, और मेरे लिए वो क्या है वो मैं बताती हूँ। मेरे लिए वो है घर का चावल दाल और चोखा, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है। बहुत सिंपल खाना है पर मुझे बहुत पसंद है। कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है जब हम अपने किसी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वाक्य प्रयोग मतलब अगर जब भी हम बारिश का मौसम हो तो क्या होता है, चाय और पकौड़े की एकदम से लगता है ना याद आ जाती है, तो पकौड़ों की जब याद आती है या खुशबू आ रही होती है हमारे एकदम, तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि भाई मुझे तो खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मिठाई देखकर मुंह में पानी जरूर आ जाता है। अच्छा, कह भी रहे हैं खाने पीने में इंटरेस्ट है, लेकिन मिठाई देख के हो जाता है पानी। ये तो भाई आपने कमाल की बात करी। और इसी तरह एक लिखते हैं कि बचपन में मैं कच्ची इमली और कच्ची बेरी जब भी देखता था मेरे मुंह में पानी आ जाता था, खूब चटकारे लेकर खाता था। मैं अभी सखी सहेली प्रोग्राम में ये कमेंट लिख रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया। और कच्ची इमली और कच्ची कैरी खाने खाना कम हो गया, नहीं तो ज्यादा खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं। क्या
1: बिल्कुल सही
0: बात
1: कहा।
0: है।
1: और एक हमारे और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मेरे पापा जब भी अपने हाथों से घेवर बनाते थे तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था।
0: तो चलो भाई, इसी के साथ साथ हम लोग एक गीत की ओर बढ़ चलते हैं।

0: हूँ। तो आरती देखो, बातें करते करते प्रोग्राम का समय कैसे बीत चला पता ही नहीं चला। तो लेते हैं सबसे विदा सभी को, मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: आइए सुनते हैं अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने रंगमंच की सादगी से अपना सफर शुरू किया, सिनेमा और स्क्रीन पर अपने किरदारों से जाने गए और एक बहुत ही खूबसूरत शो गुल्लक के जरिए लाखों दिलों का हिस्सा बने हैं। हम बात कर रहे हैं गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान जी की। जमील खान जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझे आमंत्रित करने का। ये मेरे लिए बाइस फख्र चीज है कि मैं विविध भारती के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और दिल खोल के बातें करूंगा।
1: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, दिल खोल के बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। तो शुरुआत हम चाहेंगे, जैसे हम विविध भारती के परिसर में आए, बहुत सारी चीजें आपने देखी, कुछ रेडियो
2: मेरी यादें हैं उसकी बात है। तो देखिए, मैं बोर्डिंग स्कूल निकल गया था तीसरी क्लास से ही
1: जी,
2: तो उतना ज्यादा रेडियो से नाता नहीं रहा, लेकिन जब मैं छुट्टियों में आता था तो मुझे याद है हमारे घर में, मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में, लेकिन जो म्यूजिक बजता था वो रेडियो पर बजता था आमतौर पे, या कैसेट प्लेयर्स होते थे उस जमाने में, तो वो भाई बहन वो चलाते थे। और रेडियो मुझे याद आता है कि अम्मी हमारी जो है ना वो गुनगुनाती थी हल्के हल्के,
1: कुछ भी काम करते हुए वो यादें हमेशा बरकरार रहती हैं।
2: तो वो एक बड़ी मीठी याद है कि अम्मी काम कर रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, पीछे कहीं रेडियो बज रहा है और साथ साथ वो भी गुनगुना रही हैं। तो वो अम्मी से बहुत ज्यादा रिश्ता जुड़ा है रेडियो और गानों का, तो वो मेरी बहुत मीठी याद है बचपन की। और अब जो है वो गाड़ी में खास तौर से मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ, और उसके अलावा घर पे कभी कदार चलता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जिस पर आप गाने सुनते हैं
1: जी।
2: लेकिन जो एक
1: सफर का साथी
2: सफर का साथी जो है

0: और एक क्लासिकल जो गाने जो हैं जिनसे कि बहुत गहरा मरासिम है, वो विविध भारती जैसे चैनलों पर मिलता है। और पुराने गाने हों चाहे नए गाने, वो खास तौर से पुराने गाने जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो ऐसे चैनलों पर ही सुनने को मिलता है और मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: नॉस्टैल्जिया की बात की तो आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। आपने कहा ही बहुत कम उम्र में आप हॉस्टल चले गए थे,
0: जी
1: घर का परिवेश कैसा था? और स्कूल के दौरान या उस वक्त हॉस्टल की यादें तो खैर खूबसूरत रहती है,
0: जी
1: हमेशा याद रहती है,
0: जी
1: बट एक्टिंग का क्या तभी से आपने सोच लिया था अभिनय में जाना है, या तब तक किस तरह से आपका झुकाव इस तरफ हुआ, या घर से कैसा योगदान मिला?
0: मेरे पूरे खानदान में किसी का किसी भी आर्ट फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा है,
1: अच्छा।
0: दूर दूर तक बिजनेस व्यवसाय जो है वो रहा है। हालांकि मेरे नाना और दादा दोनों इंडियन पुलिस सर्विस में रहे हैं, और अगर सर्विस क्लास जो रहे हैं वो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रहा है। मेरे दादा का इंतकाल हो गया काफी जल्दी, वो जब स्कूल में थे तो उन्होंने पढ़ाई भी कर रहे थे और नौकरी शुरू कर दी।
1: जी
0: नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ये कालीनों का बिजनेस शुरू किया, पहले ट्रेडिंग से शुरू की
1: जी
0: और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करने लगे। और एक्सपोर्ट करते करते ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि भदोही के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार होने
1: क्या
0: लगा।
1: बात है।
0: अब मैं सुनता हूँ, ये सब मेरे बचपन की बात है, जो ये किस्से कहानियां फिर बाद में सुनता हूँ कि क्या जलवे थे मेरे फादर के, कि
1: जी
0: मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई,
1: ये
0: इतनी
1: वो
0: भीड़
1: इज्जत
0: थी।
1: है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता
0: जी,
1: है।
0: तो वहां से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा एज सच नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है, किसी ने कभी रोका टोका नहीं, खासतौर से मेरे घर वालों ने तो कभी कोई तंज भी नहीं कसा।
1: जी
0: तो वहां से शुरुआत हुई और वहां से करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहां भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जेईई का होता
1: जी
0: है,
1: का
0: उसमें जब नहीं हुआ मेरा तब मैंने पलटी मारी, मैंने कहा अब हो गई पढ़ाई साइंसेज वगैरह की, अब जो मजा आता है जिसमें वो करते हैं, तब इस तरफ झुकाव हुआ। और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया, बीए कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, शेरवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक,
1: जी
0: और फिर यहाँ एएमयू से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने।
1: जी
0: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था।
1: थिएटर था, और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो वो जरूर मिलती है, तो मुझे
0: जी
1: लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन शाह जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे
0: जी
1: कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहां पर शायद वही ख्वाब खींच कर लेकर आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि उनका साथ मिला मुझे, और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम होता है।
1: जी
0: तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की कि छोटे मोटे रोल क्राउड उराउड में ऐसे वैसे करते करते, फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए।
1: जी
0: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है वो दो प्रोडक्शंस जो मुझे खास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं, और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी
0: जी
1: सुना है।
0: जी तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखा है उनसे और अभी भी सीख रहे हैं। ज़्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूँगा कि इंसान के तौर पे और नज़रिए के तौर पे, उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफ़ी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: यहां पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत
0: अरे
1: सुनवाएं?
0: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगले आजम का वो गीत, प्यार किया तो डरना
1: प्यार
0: क्या।
1: किया तो डरना क्या,
0: जी
1: आइकॉनिक गीत।
0: जी
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं वो गीत।

0: बात करते लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये
1: जी
0: दोनों कैसे चली? पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा,
0: बिल्कुल
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहां आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे
0: जी
1: तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी चीजें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नजर किया मैंने, जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज में फिल्में हो या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी,
0: जी
1: और मेरी पकड़ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में, और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की,
0: जी
1: वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नज़रिए से, और वो यही आता था। तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीज़ें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए, और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं, और लोगों से काम मांगना आता नहीं था, वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट नो, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे,
0: आज भी नहीं है?
1: आज नहीं, आज भी वो हिचक है मेरे अंदर कि
0: अच्छा
1: लोगों से काम मांगने का,
0: जी
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, कि आपका काम पसंद करता हूं और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं, बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए। खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहां देखा, समझा, बुलाया, और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूंगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
0: बिल्कुल
1: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय

0: है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर।
1: बिल्कुल, वो एक नींव है
0: जी
1: जहां से सब चीजें
0: जी
1: शुरुआत
0: जी
1: होती
0: जी
1: है
0: जी
1: और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं।
0: जी तो हाँ वही एक शुरुआत, और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके,
1: जी
0: तो करना चाहिए थिएटर में। उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज अ वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही
1: वहीं
0: रास्ते
1: से
0: खुले।
1: रास्ता खुला।
0: हाँ,
1: अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को।
0: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
1: क्या बात है, क्या पसंद है
0: जी
1: सुनवाते हैं गीत।
0: जी

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है,
1: जी
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी जरूरी है। तो
1: जी
0: ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे,
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूं मैं।
1: जी
0: एक तो जहां से शुरुआत हुई, संजय लीला भंसाली की फिल्म से, हम
1: जी
0: दिल दे चुके
1: रामलीला
0: सनम,
1: भी उनके साथ
0: रामलीला भी उनके साथ हुई, और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर।
1: जी
0: बिल्कुल अलग किरदार, और
1: जी
0: एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही।
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों का
1: जी
0: काम करने का तरीका एकदम अलग, तो
1: जी
0: क्या डिफरेंस है? और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, संजय भंसाली जो है वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर हैं और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत

0: रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी।
1: बिल्कुल जी,
0: तो
1: लार्जर देन लाइफ,
0: लार्जर देन लाइफ,
1: जी
0: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है। खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में,
1: जी
0: और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूजिक कंपोज भी करते हैं अब तो,
1: बिल्कुल,
0: और बाकी तमाम चीजें तो हैं ही। तो उनका जो अंदाज है वो काफी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो दो टेक लगें चाहे 200 टेक लगें,
1: अच्छा,
0: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं।
1: जी,
0: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं
1: जी,
0: कि जो उनको वो चीज दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो। वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं है तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज भी है।
1: बिल्कुल।
0: और अनुराग का जहां तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है, और वो रियलिज्म में ज्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि वहां पर भी आपको अच्छे एक्टर की जरूरत पड़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है।
1: स्पॉन्टेनियस,
0: हाँ,
1: स्पॉन्टेनियस
0: बिल्कुल, और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए। कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीजें भी मिल जाती हैं उसमें। कभी कभी अच्छी चीजें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता है वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फर्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है, और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
1: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें जिसको बहुत तैयारी की जरूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
0: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
1: श्रीकांत में आपने काम किया?
0: श्रीकांत, हाँ, श्रीकांत में कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टफ था
1: जी,
0: क्योंकि एक तो उम्र ज्यादा, और क्या कहते हैं, ऐसी शख्सियत
1: जी
0: जो बहुत ही अजीम, बहुत ही महान शख्सियत, और अब भी सबने देखा है,
1: हाँ,
0: सुना है, देखा है,
1: बिल्कुल,
0: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था। और मुश्किल आई पेश, लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की।
1: अच्छा,
0: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर, मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है,
1: हाँ, हाँ।
0: एक तो साउथ इंडियन, और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी, क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे, तो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है, चलो ये मैनेज हो जाएगा
1: जी।
0: लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था, और थोड़ा मुझे डराया भी उसने।
1: अच्छा, ज्यादा तैयारी के साथ उतरे आप। आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
0: चिंगारी कोई भड़के।
1: क्या बात है, आपकी पसंद। बिल्कुल, सुनवाते हैं गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है। गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार, अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है?
1: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो एपिसोड्स आएंगे।
1: जी, दो चीजें देखिए उसमें, शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया,
1: घर का हिस्सा हो गया, और मेरे लिए भी एज ए कैरेक्टर अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई या जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान, ये मेरी नॉर्मल जबान है,
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा, स श ज ज, और मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी जाती जिंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की जिंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफी समृद्ध परिवार से हूँ और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी
0: जी,
1: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
0: क्या है, बिल्कुल
1: क्या
0: चुनौतियां हैं,
1: क्या चुनौतियां हैं। तो उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पर जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास, वो इमोशन वहां से आता है।

0: और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया, वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहां से उठाई हुई चीजें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं हैं तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
0: जी, और आंख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें। वो जखीरा बनता है आपका, कब क्या चीज की जरूरत पड़ जाएगी
1: जी,
0: आप वहां से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
1: और यहां पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा करना, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है? क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक,
0: जी
1: ये भी एक सीख देता है,
0: जी
1: तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है?
0: बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि
1: जी
0: मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। और एक बात जब मैं कहना चाहूंगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, मैं घर गया हुआ था, बॉम्बे आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अब्बू आए कहने कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। और मेरे, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी, पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अब्बू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाइए मत, वो जो शब्द था ना,
1: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है। बिल्कुल
0: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा। और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं उससे ज्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है, और मैं यही कहूंगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं। और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की जरूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ द सी ऑफ लाइट्स, उसके बारे में कुछ बताइए, वहां का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहां पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइस, जिसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा, और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था और वक्त पर ख़त्म भी हो जाता था।
1: जी
0: तो वो एक एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहां पर ज्यादा दिखी मुझे। तो फर्क ये इतना सा है। और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
1: जी और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहां पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
0: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूँगा मैं, कोई कमाल की चीज़ आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूँगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा,
1: जी
0: अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फलां के बाप है कर लिए ही कर, मैं सैकड़ों मना कर चुका हूँ, मना करता रहूंगा उसको।
1: जी
0: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मच्योर लव स्टोरी में करना जरूर चाहूंगा। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो चीज की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो जरूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतजार हम करें?
0: अभी कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक फिल्में हैं

0: सूरज बड़जात्या साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने, और एक अभी फिल्म जो कर रहा हूँ वो जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है। और अभी बाकी जो वेब शोज में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगी मुझे नहीं मालूम, वो डेट अनाउंस होंगे तभी पता चलेगा।
1: जी
0: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेज़ी में भी की है, तो वो हैं दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेज़ी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं। और वेब शोज में से तो गुल्लक का सीज़न 6 आएगा अगले साल।
1: उसका इंतजार
0: हाँ,
1: रहेगा हमें।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहां से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेवर्ड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी।
0: जी
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी, उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में और उन्होंने पहचान लिया, जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले,
0: जी
1: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल भाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन कि डायरेक्टर से बात हो रही थी वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब हैं, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक, क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं,
0: जी
1: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल हैं हमारे। उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब, जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और लेजेंड हैं वो, तो बच्चन साहब बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है।
0: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
1: जी,
0: वो बताना चाहेंगे। तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
1: जी,
0: कभी कभी मजेदार भी होती है,
1: जी जी,
0: उस बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, वो चोट मुझे आई थी, दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिए के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था। तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया। फिर उसके बाद वो रिक्शा वहां पर पड़ा, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहां से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं, मजा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है, एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है,
0: एक और।
1: हाँ तो सर एक और करते हैं
0: जी,
1: मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा है, कुछ कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया, तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुए था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पांव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
0: फिसल गया
1: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई तगड़ी, लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि वहां मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहां शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी। फिर जब मैं वापस आ रहा था वहां से, तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया कुछ, मेरे ख्याल एक मिनट के लिए बेहोश रहा हूँगा मैं। फिर होश आया तो कह रहे सर, उसने भी जब उसके बाद लिटाया वटाया तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने,

0: कि सर देखिए ऐसे हुआ था, ये वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन्स हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिम्प है।
1: अच्छा।
0: हाँ, कुछ कुछ एक सीन में
1: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे।
0: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे, क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी।
1: जी जी जी
0: तो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था, लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए।
1: हाँ।
0: और वो ऐसे क्या कहते हैं, सरिये निकले हैं और बांस वास निकला हुआ है दुकानों का, घरों का, और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ उसको, पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सलिये वगैरह निकले हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा। तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई, वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और फिर जब वो गुजर गया फिर वापस आया। तो वो
1: वो एक रिफ्लेक्स,
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में।
1: बिल्कुल।
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप।
1: बिल्कुल।
0: अब उसकी शॉट रोक नहीं दिया, कि अरे ये वहां से रोको यार भाई, नहीं आ रहा है तो ठीक है डील करो ना उससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है।
1: बिल्कुल। कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते जिस तरह से जो आ रहा है उस तरीके से?
0: बेसिकली देखिए मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना, जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कुछ बोलती है, और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे।
1: जी।
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना, कि बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना, और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो है, जो अल्फाज हैं, वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में। तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूँ। और जहां तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूं, और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूं।
1: जी।
0: कुछ एक तरीके होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं पता है, डायरेक्टर को नहीं पता है कि मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है।
1: जी।
0: और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं, कि आप अपनी जबान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा है आपका, उससे आपकी चाल बदल जाती है।
1: आजकल वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से पहले।
0: जी, जी,
1: तो गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीजें, कुछ एक होता ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी।
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए नए थे सारे। और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है उस लिहाज से। तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना
1: जी,
0: क्योंकि एक परिवार है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी
1: जी।
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया। और फिर शूट करके टाइम तो और ज्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा।
1: बिल्कुल दौड़ने लगा, और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पर एक गीत आपकी पसंद का।

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते,
0: जी
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं,
0: जी
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिली जुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट नहायत ही अच्छी होती है गुल्लक की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ही भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक की कामयाबी में।
0: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी, उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का
1: जी
0: कुछ फैन मोमेंट?
1: हाँ, देखिए बहुत सारा काम रहा है मेरा थिएटर में। जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन
0: जी
1: वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर। कुछ एक फिल्में आई उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे, और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी। लेकिन गुल्लक से मुझे जो फर्क जो महसूस होता है वो है, पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से
0: बिल्कुल
1: बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने जरूर दिया है मुझे। और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हों,
0: बिल्कुल
1: चाहे वो भाई के तौर पे मिले, चाहे बेटे के तौर पे मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले। बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं, या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो।
0: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, उस बारे में कुछ बताएं।
1: हाँ, वो भी देखिए ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो, और मेरे पांव छूने लगे, तो मैंने उनको उठाया, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप, तो वो गले लग गए और गले लगे रहे काफी देर तक। और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी और बस थैंक यू कह के चले गए।
0: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना
1: जी
0: ज्यादा
1: जी जी
0: ये नवाजा जाता है इस प्यार
1: जी
0: से।
1: जी जी और कमाल की चीज है वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो।
0: बिल्कुल। और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितनी कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
1: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूं, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो हैं मुझे देख के काफी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है।
0: जी
1: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का,
0: जी
1: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूं मैं, तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूं कि उसको समझूं, जटिल न रहूं इस बात का कि मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं वही सही है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया, और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस
0: उस
1: बात को समझना कि
0: दृष्टिकोण से देखना।
1: हाँ, कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: और मस्तीखोरी तो भरी है मेरे अंदर, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूं और मैं सीरियस कम रहता हूं लाइफ में, और जिंदगी को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली स्ट्रेस नहीं लेता मैं, और स्ट्रेस देता भी नहीं मैं, बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से, और इस तरीके से काम भी करता हूं कि किसी को मेरी वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए,
0: बिल्कुल
1: कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, या कोई कोई एज नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना
0: जी
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है,
0: जी
1: स्टारपना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से
0: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते हैं।
1: यही कहूंगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़ें
0: जी,
1: इसी में हम सबकी भलाई है।
0: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सेलुलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार आदाब। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर युववाणी प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त इमदाद अली। आप सभी का स्वागत खैर मकदम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए युववाणी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, सही खान पान और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी आप इस पोषण सप्ताह में पा सकते हैं। दोस्तों, हर साल 1 से 7 सितंबर तक ये सप्ताह मनाया जाता है जो कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहलाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1982 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण से मुकाबला करना, सही पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को रोजाना के भोजन में जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर को शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने जो भोजन करने की जो शैली है उसको जो है विटामिन से भरपूर बनाए, अच्छे खान पान से, हरी सब्जियों से, मिनरल से, विटामिन से और भी जो है जो ऐसे तत्व का सेवन हमें करना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक हों। तो ये थी बात आज की बात में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। दोस्तों, आज है मंगलवार और आज हम युववाणी में हमारा स्पेशल सेगमेंट लेकर आए हैं, फोन करें गीत सुने। तो इसी कड़ी में पहला फोन हमें आया है बीआर मिर्धा कॉलेज से अनवर हुसैन का। वो सुनना चाहते हैं फिल्म जंगल लव का ये गाना।

खिदवाई कॉलोनी नागौर से ये हमें फ़ोन आया है मोहम्मद हसन का, जो सुनना चाहते हैं फिल्म आन मिलो सजना का ये गाना।

सिंघलों का मोहल्ला अजमेर गेट नागौर से हमें ये फ़ोन आया है इकबाल खान सिंघल का, ये सुनना चाहते हैं फिल्म CID का ये गाना।

फ़ोन करें गीत सुनने में। ये अगला फ़ोन हमें आया है चंपासर गांव से प्रेम कुमार का, ये सुनना चाहते हैं ये गीत।

0: टिगरी बाजार नागौर से मोहम्मद सोहेल सुनना चाहते हैं फिल्म कयामत का ये गाना।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
1: एक कमबख्त दिल की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है
2: तो भुगतो।

फोन करें गीत सुनने में। अजमेरी गेट नागौर से पप्पू सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का ये गाना।

0: Goodbye.
1: अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी नागौर का, ये चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। 5:30 हुए हैं, अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

जो बाहर की सुनता है वो डर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। चिरमी चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी प्यारी सखियों को सुनीता चौधरी का निभरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, हमारे देश में और पूरी दुनिया भर में जो साल 2026 है वो विदाई की तरफ चल चुका है, और नवा महीना इस साल का लग चुका है, यानी सितंबर का महीना आज से शुरू हो चुका है। और आइए आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस महीने में क्या क्या खास होता है। सो क्यों, बहुत सारी चीजें हैं जो इस महीने को बहुत खास बना देती हैं, जैसे कि इस साल जो पहला सप्ताह है सितंबर का, उसको राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। और भी कुछ खास बातें हैं आपके साथ चर्चा में आगे बढ़ते बढ़ते साझा हम करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देश भर में मनाए जाने वाले 1 से 7 सितंबर तक के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य से क्यों लोगों को संतुलित आहार और सेहतमंद जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा पूरे सितंबर महीने को देश भर में पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है, ताकि जो कुपोषण की समस्या है उसको दूर किया जा सके। सके राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी, और इस लक्ष्य के साथ ये हुआ था कि लोगों को ये समझाया जा सके कि स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए सही पोषण कितना जरूरी है। सके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं है, बल्कि रोजाना भोजन में कुछ तत्वों का शामिल होना भी जरूरी है। इन पोषक तत्वों की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर होने लग जाती है, और इसके साथ साथ थकान, कमजोरी और भी कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। सखियों, खाने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रोटीन, ये होना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी मसल्स है, हमारी स्किन है, हमारे हेयर्स हैं, शरीर के टिश्यूज जो बनते हैं, और अगर मान लीजिए कहीं डैमेज होते हैं तो उनकी जो मरम्मत का काम है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सखियों, आप दाल, राजमा, चना, मूंग, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, एग्स वगैरह को अपनी डाइट में शामिल करके प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा सखियों, अक्सर ये हम मानते हैं कि जो फैट है वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, फैट नहीं लेना चाहिए, लेकिन शरीर को सही मात्रा में फैट की भी ज़रूरत होती है। ये जो फैट होती है सखियों, ये एनर्जी देने के अलावा शरीर में कुछ जरूरी जो विटामिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती है। बादाम है, अखरोट है, मूंगफली, तिल, अलसी जैसी चीजों से हमें हेल्दी फैट मिलती है। इसके अलावा सखियों, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भी हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं, और इनको भी हमारी डाइट में होना चाहिए। सखियों, फल, सब्जियां, दालें, बीन्स, ओट्स, साबुत अनाज, नट्स, अलग अलग रंगों के जो फल होते हैं वो, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन्हें अगर हम रोज की डाइट में शामिल करते हैं तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है। सखियों, एक ही तरह के भोजन से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, इसीलिए रोज के खाने में अनाज, दाल या दूसरे जो प्रोटीन सोर्स हैं, सब्जियां हैं, फल, दूध, दही, नट्स और सीड्स को शामिल करना चाहिए, और साथ ही पर्याप्त पानी भी होना चाहिए, ताकि जो बैलेंस डाइट है वो ली जा सके, और यही बेहतर ऑप्शन भी माना जाता है। सखियों, हम सभी खाते हैं, खाना तो सभी खाते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार का अपना अपना सबका नियम होता है, लेकिन हमें मतलब कब खाना है और कितना खाना है, हेल्दी रहने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। पोषण सप्ताह और पोषण महीना मनाया जाने के पीछे यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कुपोषण की समस्या को भी दूर किया जा सके, और साथ ही साथ जो कुपोषित तो नहीं है लेकिन उनको भी पोषण की सही मात्रा का जो ज्ञान है वो हो सके, ये जानकारी उनको मिल सके। इसी जागरूकता के लिए ये पोषण सप्ताह और पोषण महीना जो है सितंबर का मनाया जाता है। और इस महीने की और क्या क्या खास बातें हैं हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा गीत सुनेंगे।

0: सचो सितंबर का महीना न केवल पोषण बल्कि साक्षरता के लिहाज से भी खास है और सेहत के लिहाज से भी। सचो सितंबर के पहले सप्ताह को साक्षरता सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। सचो हर वर्ष 8 सितंबर को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इसके ठीक पहले साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भारत में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 1 से 14 सितंबर तक उल्लास साक्षरता पखवाड़ा भी आयोजित किया जाता है। इसमें शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर के पहले 2 सप्ताह में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सके वर्ष 2026 में साक्षरता सप्ताह और दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सक्यों साक्षरता सभी के लिए एक मौलिक मानव अधिकार है। ये लोगों के लिए व्यापक ज्ञान, कौशल, मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहार प्राप्त कैसे करने के लिए एक नींव है, ताकि समानता और गैर भेदभाव, कानून के शासन, एकजुटता, न्याय, विविधता और सहिष्णुता के प्रति सम्मान पर आधारित स्थायी शांति की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध भी बनाए जा सके। हमने आपसे बात की है कि पोषण महीना मनाया जाता है और हमने अभी बात की आपसे कि ये साक्षरता सप्ताह भी इसी महीने में शामिल होता है और सेहत के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है महीना। तो क्यों और कैसे, इसकी हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: सक्यों हम बात कर रहे थे सितंबर महीने की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इस महीने हमने बात की कि पोषण महीना पोषण सप्ताह मनाया जाता है और उसके अलावा साक्षरता सप्ताह भी इसी महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। और उसके बाद में हमने जैसे बात की कि साक्षरता पखवाड़ा आयोजित किया जाता है भारत के स्तर पे। और उसके अलावा सक्यों यहाँ पर यानी कि हमारे देश में जो सितंबर महीना है इसका जो पहला पखवाड़ा होता है इसे स्वच्छता पखवाड़े के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि जो स्वच्छता है इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से और उसके साथ साथ ही पर्यावरण संरक्षण को गति देते हुए जो नुकसानदायक तत्व हैं उनको यूज हम नहीं करें, उनका थोड़ा हम परित्याग कर सकें, इस संबंध में जानकारी साझा करने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन भी सितंबर महीने के पहले पखवाड़े में किया जाता है। अब बात करते हैं सेहत की दृष्टि से ये कैसे इम्पोर्टेंट है। तो सखियों इसी महीने को यानी सितंबर के महीने को हर वर्ष अल्जाइमर महीने के रूप में भी मनाया जाता है। दुनिया भर में सखियों विश्व अल्जाइमर माह के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो अल्जाइमर रोग है और डिमेंशिया है इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई जा सके और इससे जुड़े हुए जो सामाजिक कलंक है उनको कम किया जा सके। सखियों इस महीने की 21 तारीख को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले ये पूरा महीना अल्जाइमर महीने के रूप में मनाया जाता है। सो अल्जाइमर के बारे में हमने बात की तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक विकार है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी याददाश्त

उसके सोचने समझने की जो क्षमता है या निर्णय लेने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इस रोग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें जैसे किसी से कोई बात हुई उसको भूल गए या फिर तुरंत ही कोई घटना घटित हुई है लेकिन फिर भी वो याद नहीं है या फिर कोई जाना पहचाना रास्ता है यहाँ तक कि अपने घर का रास्ता है तो वो भी हम भूल जाते हैं। जिसको मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है वो भूलने लग जाते हैं या भूल जाते हैं। रोज़मर्रा के जो निर्णय लेते हैं या हिसाब किताब करते हैं तो उसमें या तो गलतियां होती है या भ्रम पैदा हो जाता है कि ये सही है कि नहीं है, ये बार बार होने लगता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। यूं तो सखियों ये बढ़ती उम्र के साथ माना जाता है कि ये रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है लेकिन अगर फिर भी किसी को ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो सोचने वाली बात है यहाँ पर। और ये इसी महीने का महत्व है सखियों कि लोगों को प्रेरित करें कि लक्षणों की अनदेखी नहीं करें, समय पर डॉक्टर से जांच कराएं। साथ ही जो पीड़ित व्यक्ति है उसके जो परिवार हैं उनके लिए मानसिक और सामाजिक सहयोग भी दिया जा सके, यहाँ पर ये जागरूकता भी दी जाती है। इसके अलावा इस बीमारी के इलाज के लिए और रोकथाम के लिए वैज्ञानिक रिसर्च और फंड जुटाने पर भी जोर दिया जा सके, ये इस महीने को डेडिकेट करने के पीछे उद्देश्य है। तो सितंबर महीने की इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने आपके साथ साझा की और आपके साथ और भी जानकारियां साझा करेंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक गीत के लिए।

0: सकियो, मानसून के मौसम में आंखों के संक्रमण जैसे कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि गुलाबी गुलाबी सी आंखें हो जाती हैं या लाल लाल से डोरे नजर आने लग जाते हैं ऐसा कुछ, या स्टाइज और कॉर्नियल अल्सर जो है वो समस्याएं बढ़ जाती हैं। और कीटाणुओं को फैलाने का एक सबसे आसान तरीका है सखियों कि बिना धुले हुए हाथों से अपनी आंखों को छूना। बिल्कुल सखियों, जब हमारे हाथ साफ नहीं होते हैं और हम अपनी आंखों को छूते हैं तो इससे कीटाणुओं को बहुत आसानी से फैलाया जा सकता है। इसीलिए जरूरी है सखियों कि अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके हाथ साफ नहीं है तो ऐसे में अगर आंखों में खुजली आ रही है, जलन हो रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आंखों को छूने की जरूरत लग रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, नहीं छुएं। पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करें तब अपनी आंखों को छुएं। और अगर आंखों में जैसे जलन खुजली जैसा हो रहा है तो किसी साफ कपड़े या टिश्यू पेपर से हल्के हाथों से थपथपाते हुए आंखों को रगड़ने से, मतलब थपथपाएं ही, रगड़े नहीं उसको, क्योंकि अगर रगड़ते हैं तो कॉर्निया को नुकसान पहुंच सकता है या बैक्टीरिया फैल सकते हैं और इसकी वजह से सूजन भी बढ़ सकती है या फिर हल्की खरोंच भी लग सकती है। यानी कि छोटी सी चीज़ लगती है कि हम अपने हाथों से अपनी आंखों को रगड़ लेते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि इतना सब कुछ भी आंखों के साथ हो सकता है। बहुत ही नाजुक सी और सेंसिटिव सी आईज है हमारी, तो इनका केयर भी हमें करना पड़ेगा। आज स्वास्थ्य टिप्स में हम मानसून आई केयर में कैसे आंखों को रखें सुरक्षित पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आगे बातों को बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: और सखियों, बात कर रहे थे हम आई केयर के बारे में। तो अगर आप लेंस कैरी करते हैं तो लेंस साफ करने के लिए हमेशा जो निर्धारित लेंस सॉल्यूशन है उसी का इस्तेमाल करें और स्वच्छता संबंधी जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन जरूर करें। सखियों, अगर मान लीजिए लेंस कैरी कर रहे हैं और आपको लालिमा, खुजली या डिस्चार्ज जैसा आंखों में महसूस हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और सखियों, जैसे हम मानसून की बात कर रहे हैं तो बारिश में कई बार होता है कि नहाने का शौक होता है, नहा लेते हैं बारिश में। अगर नहा रहे हैं या फिर आप जैसे स्विमिंग कर रहे हैं या फिर जैसे मौसम है आंधी सी आ गई है, धूल भरी हवा सी चल रही है, तो ऐसे में कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने, यानी कि अवॉइड करें लेंसेज पहनना। इसके बजाय आप यहाँ चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जैसे सखियों अक्सर भीड़भाड़ वाली जगह पर रहते हैं, प्रदूषित सड़कों पर आपका आना जाना अक्सर होता है या आप टू व्हीलर ज्यादा चलाते हैं तो यहाँ भी आपको अपनी आंखों की सुरक्षा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि आप जब भी ऐसी जगहों पर हों तो आपको चश्मे का प्रयोग करना चाहिए और उसको नियमित रूप से साफ भी करते रहना चाहिए। सखियों, आपको विशेषकर इन दिनों में अपने तौलिए, तकिए के कवर को समय समय पर धोते रहना चाहिए। और यूं तो ये ऐसी चीजें हैं जो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन दिनों में तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। और सखियों, अगर आप आंखों के लिए मेकअप यूज करते हैं, किसी भी तरह का आप मेकअप लगाते हैं, काजल है या लाइनर है या आई शेडोज यूज करते हैं, कुछ भी आप लगाते हैं तो वो भी आप शेयर नहीं करें। यानी कि आपके पास जो अवेलेबल है वो किसी को नहीं दें, और अगर मान लीजिए नहीं है और आपको लगाना है तो किसी से मांग कर नहीं लगाएं। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको 3 से 6 महीने के अंदर बदलते रहें, ये आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सो क्यों, इन दिनों में भी खुद को

रखें, विटामिन ए सी और ई के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खाएं, क्योंकि सखियों हम जो भी खाते पीते हैं ना वो हमारे शरीर के पूरे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे दिमाग को भी अफेक्ट करता है और उसके अलावा हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी वो असरकारक होता ही है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे आंखों की सेहत के लिए भी अच्छी हों। एक बात और आपके साथ करना चाहेंगे सखियों, वो ये कि हम अक्सर क्या करते हैं कि जैसे अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम बुखार हुआ और उसने डॉक्टर को दिखाया, मान लीजिए डॉक्टर ने 3 या 5 दिन की दवाई दी है, वो पूरी नहीं लेते, कोई भी नहीं लेते हैं सखियों, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरी पूरी दवाइयाँ लेते ही हैं, तो उसमें से क्या होता है कि 1 दिन या 2 दिन की डोज बच जाती है। ठीक है, हम उसे संभाल के रखते हैं। अब होता क्या है, घर में कोई दूसरा बीमार पड़ गया तो देखते हैं कि उसको डॉक्टर को दिखा के आए थे ना, वही दवाई इसको भी दे देते हैं, क्योंकि क्या है, वही सर्दी जुकाम है, सरदर्द है, या फिर क्या करते हैं, सरदर्द के लिए एक जैसी गोली ही सब ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आंखों के साथ तो नहीं करें। जैसे आई ड्रॉप्स के मामले में क्या होता है, एक आई ड्रॉप लेकर आ गए, किसी को भी आंखों में प्रॉब्लम हुई, लो भाई एक एक बूंद डाल लो, आंखें ठीक हो जाएगी, है ना, ये नहीं करना है। एक बात तो ये कि किसी के लिए अगर लाई हुई है तो वो उसी को यूज करनी है, हर किसी के लिए एक जैसी दवाई नहीं होती है। दूसरी बात कि यूं ही जाकर किसी से पूछ कर कहकर दवाई आपको यूज आंखों के लिए नहीं करनी है, यानी कि डॉक्टर से पूछ कर बात करके तभी दवाई डालनी है। हो सकता है ऐसे, क्योंकि ऐसा करने से कुछ समय के लिए राहत मिल जाए, लेकिन आगे चलकर ये नुकसान पहुंचा सकता है और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ भी सकती है। समय समय पर सखियों आंखों की जांच करवाते रहें, आप अपनी आंखों का ख्याल रखेंगे तो उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को भला बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत अपनी सखी सुनीता चौधरी को, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला जगत कार्यक्रम आकाशवाणी नागौर का, ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक

0: उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। यह है फिल्म संगीत की पहली पेशकश। फिल्म का नाम अनुपमा।

आशा भोसले की आवाज़ में सुना भी आपने ये गाना फिल्म वक्त से। लीजिए फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।

लता मंगेशकर के गाए, फिल्म साथी के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं माटी के स्वर कार्यक्रम। माटी के स्वर कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गाजी खान के गाए कुछ लोकगीत।

साजन फूल गुलाब को मैं फुलारी बाबा। अरे साजन मा

0: इसी लोकगीत के साथ माटी के स्वर कार्यक्रम में भी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ शिखर सम्मेलन में संबोधन, आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान। जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में आज से दो दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षाओं का उपयोग नहीं करने के निर्देश। और मलेशिया में संपन्न लैक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक, टीम में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र की 9 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित सम्मेलन में श्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंडों को खारिज करने की बात कही। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है, ये किसी देश के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने एससीओ को लेकर भारत की सोच साझा की। उन्होंने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी अपनी दो दिन की किर्गिस्तान यात्रा पूरी कर बिश्केक से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने पर देशवासियों को बधाई दी।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है। विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी एफआईआर बंद करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस अवधि के प्रदर्शन से जुड़ी कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है, जिन पर पहले से ही संगीन आपराधिक मामले हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने ये आदेश दिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
0: देश में जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए आज से नई दिल्ली में दो दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में जल सुरक्षित भारत बनाने की दिशा में चर्चा की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और विभागों के अधिकारियों को एक मंच पर लाया गया है। उनके साथ बेहतर जल प्रबंधन के लिए कार्य प्रणालियों और चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन में जल

0: संचय, जनभागीदारी, कैच द रेन और जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन सहित अन्य विषयों को भी शामिल किया गया है। मंत्रालय की इस पहल से विभागीय शिखर सम्मेलन से सहकारी संघवाद और साझा जिम्मेदारी की भावना को और मजबूती मिलेगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि सम्मेलन से राजस्थान की जल सुरक्षा पर भी मंथन कर रोड मैप तैयार किया जाएगा।
1: जल संसाधन और हमारे जो पीएचडी विभाग है, इसको किस तरह से बेटर क्रियान्वयन के साथ हम आगे बढ़ा सके, उस पर मंथन होगा। इसके अलावा हमारी जो राजस्थान की वृहत परियोजना है, चाहे हमारे वो ERCP हो, चाहे हमारी यमुना हो, चाहे हमारी जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे काली तीर हो, पीपलकोट हाई लेवल हो, इस तरह की जो बड़ी परियोजना है उसका प्रेजेंटेशन भी हम इसके अंदर देने वाले हैं। इस तरह से हाँ, राजस्थान के अंदर वैसे भी पानी की कमी है और हमारी जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें केंद्र का सहयोग भी अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे राजस्थान की जरूरतें हैं हम बेहतर तरीके से केंद्र के सामने रखने का हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10,245 वार्डों के लिए 53,700 से अधिक प्रत्याशियों ने 65,000 से ज्यादा नाम निर्देशन पत्र भरे। सबसे अधिक 3,800 से ज्यादा पर्चे जयपुर जिले में भरे गए। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों और तीसरे मोर्चे के प्रत्याशियों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। विभिन्न स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी मुकाबलों को त्रिकोणीय बना रही है। कई जगह बागी उम्मीदवारों को मनाने की कवायद भी की जा रही है। 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जैसलमेर और पाली सहित विभिन्न स्थानों पर 2 दिन की ये ट्रेनिंग शुरू हुई। इस बीच नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधियों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज अजमेर में स्वीप टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा। बालोतरा में खेल खेल में मतदान का महत्व बताया जा रहा है, इसके लिए रोचक सांप सीढ़ी पोस्टर तैयार किया गया है। उधर कोटपुतली के गंगा सागर तालाब पर भी मतदाता जागरूकता के लिए दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षा कक्षों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विद्यालय भवनों की सुरक्षा को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संस्थान भवनों की सुरक्षा की सतत निगरानी और नियमित परीक्षण करने को कहा। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में पीने के साफ पानी की उपलब्धता पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि प्रदेश के 65,000 से ज्यादा स्कूलों का तकनीकी सर्वेक्षण करवाया गया है। इनमें 3,000 से ज्यादा जर्जर भवन और 83,000 से अधिक जर्जर कक्षा कक्ष चिन्हित किए गए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके उपयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही प्रभावित विद्यालयों के संचालन के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है। श्री यादव ने बताया कि IIT जोधपुर और जयपुर के MNIT के विशेषज्ञों की टीम द्वारा सरकारी स्कूल भवनों की स्वतंत्र तकनीकी सुरक्षा जाँच की जा रही है। मलेशिया में संपन्न लैक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। कुआलालंपुर में भारत ने शुरुआती मुकाबले में मेजबान मलेशिया को हराया। इसके बाद फिलीपींस को भी मात दी। कांस्य पदक के लिए भारतीय टीम का सामना सिंगापुर से हुआ। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम क्षणों में सिंगापुर को 10-9 से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय टीम में कप्तान डाली गमेटी सहित उदयपुर और जनजातीय क्षेत्र की बेटियों का अहम योगदान रहा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तिरंगे की शान बढ़ाने वाली भारतीय महिला लैक्रोस टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद राजस्थान की बेटियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और जज्बे से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने सुरक्षित भंडार से देश के प्रमुख शहरों के बाजारों में प्याज भेजना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए प्याज की आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ियों के अलावा सड़क मार्ग से भी लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज बाजारों में भेजा जा रहा है। साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया कि बफर स्टॉक से प्याज बाजार में आने के बाद इसकी उपलब्धता बढ़ी है और कीमतों में कमी आ रही है। आने वाले दिनों में प्याज के दाम में और गिरावट आएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ शिखर सम्मेलन में संबोधन, आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान। जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में आज से 2 दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षाओं का उपयोग नहीं करने के निर्देश। और मलेशिया में संपन्न लैक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक। टीम में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र की 9 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है अविनाश मल्होत्रा ने। जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इससे पहले बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। जिले में 2 चरणों में मतदान होगा। 9 सितंबर को नगर निगम अलवर सहित रामगढ़, नौगावा, मालाखेड़ा और बहादुरपुर में मतदान होगा। वहीं 11 सितंबर को कठुमर, खेरली, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, रामबास और बड़ौदा मेव में मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। इससे पहले अलवर नगर निगम के 65 वार्ड के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया। 12 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति और 13 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 100% मतदान का संदेश दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने अलवर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 17 जिलों के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें अलवर जिले के 368 करोड़ 19 लाख रुपए के 90 कार्य शामिल रहे। उन्होंने अलवर सरस डेयरी के 3 लाख लीटर क्षमता वाले प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया। अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की घोषणा की। कार्यक्रम में किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। जिले में 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य समारोह हुआ। इस समारोह में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 24 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे पहले जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की धूम रही। जगह जगह तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली गई और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में जयपुर से वर्चुअल माध्यम से ई बस सेवा की शुरुआत की। अलवर में इस दौरान 5 ई बसों को रवाना किया गया। जिले में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। बाकी बसें चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। जिले में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। जनाना अस्पताल स्थित संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र में कार्यशाला, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी तथा रैली के माध्यम से स्तनपान के बारे में जानकारी दी गई। प्रसूताओं, धात्री माताओं और उनके परिजनों तथा चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ को भी जागरूक किया गया। श्रावण के महीने में जिले के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के कार्यक्रम हुए। अलवर शहर के त्रिपोलिया मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की कतारें नजर आईं। रक्षाबंधन का पर्व भी जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे और भाइयों ने बदले में उन्हें उपहार दिए। वहीं ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर विशेष नमाज अदा की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। नागरिक सुरक्षा तैयारियों के तहत अलवर की एक हाई राइज बिल्डिंग में मॉक ड्रिल की गई। बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। इसी के साथ अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद रा इकोसिस्टम और फंडिंग न खत्म करण री अरज कीनी। पानी बचावन और इनरा बेहतर प्रबंधन रवाना माय विचार करण सारू नई दिल्ली माय आज 2 दिन रो शिखर सम्मेलन सारू भियो। प्रदेश माय जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवन और कक्षा काम नी लेवन रा हुकम दिया चिया। और मलेशिया माय भी लेक्रोस चैंपियनशिप माय भारतरी महिला टीम का सारो तमगो जीतियो। टीम माय राजस्थान रा जनजातीय हलकारी 9 खिलाड़ियां रो शानदार प्रदर्शन। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ो संदेश दिनो है। किर्गिज गणराज्य री राजधानी बिश्केक में राखी ज्या सम्मेलन में श्री मोदी आतंकवाद रा इकोसिस्टम और रकम री सप्लाई बंद करण री अरज कीनी। प्रधानमंत्री सगला सदस्य देशाओं आतंकवाद रे खिलाफ दौड़ा मानदंडा न खारिज करण बाबत कहो। वह जोर देर कहो कि आतंकवाद इंसानियत सारू गंभीर चुनौती है जो किनी देश री रणनीतिक संपत्ति निभ सके है। प्रधानमंत्री कहो कि युद्ध और लड़ाई रो हल बातचीत और कूटनीति रे जरिए ही वेवणु चाहिए। वह कहो कि भारत बाजारा न जोड़बा, कारोबार न बढ़ावो देवन वाली और विकास रा नुआ गेला खोलन वाली सगली कोशिशां री हिमायत करे है। सम्मेलन पाछे प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन री किर्गिस्तान यात्रा पूरी कर बिश्केक नई दिल्ली सारू रवाना भे गया। एक वीडियो संदेश माए प्रधानमंत्री चालू माली साल री पहली तिमाही माए देश री GDP माए बढ़ोतरी री रेट 7.8% रहवण पर जनता ने बधाई दीनी।
4: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
3: सुप्रीम कोर्ट 20-25 जुलाई बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दा न लेर विद्यार्थियों कान्यों करी जा प्रदर्शनाओं जुड़ी सगले एफआईआर बंद करण सागे एड़ा मामला में आगे जांच नी करण रो हुकम दीनो है। अदालत राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशों ने ई मियाद माई करी जा प्रदर्शन जुड़ी कोई नई एफआईआर दर्ज नी करण बाबत कहो। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ जंतर मंतर सामी प्रदर्शन में मौजूद 2873 जना रे खिलाफ जांच जारी रखने की मंजूरी दीनी है, जहां रे खिलाफ पहले ही संगीन आपराधिक मामला दर्ज है। इबीचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भरोसो दिरायो के नीट पेपर लीक मुद्दा न लेर प्रदर्शन करण वाला विद्यार्थियों खिलाफ दर्ज मामला पाछा लेर वारे खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी जावेला।
5: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
3: देश में पानी बचावण और इनरा बेहतर प्रबंधन सारू जल शक्ति मंत्रालय रे ओरू आज नई दिल्ली में 2 दिन रो शिखर सम्मेलन शुरू थियो। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल बतायो कि सम्मेलन में न्यारा न्यारा राज्य और महकमा रा अहलकार सागे पानी रा बेहतर प्रबंधन सारू कार्य प्रणालियां और चुनौतियां रा हल नू जुड़ियो विचार करियो जा रियो है। सम्मेलन में विचार सारू पानी भेड़ो करण, जनतारी भागीदारी, कैच द रेन और जल जीवन मिशन 2.0 रा तहत पीवन रा पानी री पूर्ति जुड़ी योजनावां समेत न्यारा न्यारा मुद्दा शामिल करी चिया है। राज्य रा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बतायो कि सम्मेलन में राजस्थान में पानी री हिफाजत रे बारा में विचार कर रोड मैप बनायो जावेला।
1: जल संसाधन और हमारे जो पीएचडी विभाग है इसको किस तरह से बेटर क्रियान्वयन के साथ हम आगे बढ़ा सके उस पर मंथन होगा। इसके अलावा हमारी जो राजस्थान की वृहत परियोजनाएं, चाहे हमारे वो ERCP हो, चाहे हमारी यमुना हो, चाहे हमारी जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे काली तीर हो, पीपलकोट हाई लेवल हो, इस तरह की जो बड़ी परियोजनाएं उसका प्रेजेंटेशन भी हम इसके अंदर देने वाले हैं। इस तरह से हाँ, राजस्थान के अंदर वैसे भी पानी की कमी है और हमारी जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें केंद्र का सहयोग भी अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे राजस्थान की जरूरतें हैं हम बेहतर तरीके से केंद्र के सामने रखने का हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है।
3: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आए सुन सको हो। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सारू उम्मीदवार कानून दाखिल करी चिया नाम पाना री आज जांच करी ची। राज्य निर्वाचन आयोग रे मुजब 10,245 वार्डां सारू 55,072 उम्मीदवार 66,692 पर्चा दाखिल कीना। सबू बत्ता 3,800 ज्यादा नाम पाना जयपुर जिला में फरीचिया। इस आगे उम्मीदवार कानून जनसंपर्क रो काम तेज करती उचियो है। भाजपा और कांग्रेस समेत न्यारी न्यारी सियासी पार्टियां रा उम्मीदवार सागे निर्दलीय उम्मीदवार री मौजूदगी मुकाबला न रोचक बना रही है। कई थोड़ा बागी उम्मीदवार री मान मनवल री कवायदी करी जा रही है। 3 सितंबर न दोपहर 3 बजे ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। ये पाछे राज्य निर्वाचन आयोग री ओरों उम्मीदवार न चुनाव चिन्ह आवंटित करा जावेला। न्यारा न्यारा हल्का माए वोट 9 और 11 सितंबर न पड़ेला। निकाय चुनाव प्रक्रिया ठीक तरीकों करावन सारू चुनाव ड्यूटी माए लगायोड़ा कर्मचारियां ने सिखावन दी जा रही है। आज पाली माए 2 दिन रोज सिखावन शिविर शुरू हुयो। इबीच नगर निकाय चुनाव में जनता की बत्तियों बत्ती भागीदारी तय करणसार चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान रा तहत न्यारा न्यारा आयोजन रखा जा रहा है। आज अजमेर में स्वीप टीम री ओरों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखी जियो। कोटपुतली रा गंगा सागर तलाव में दिया जलावन रो कार्यक्रम रखी जियो है। मालोत्रा में रोचक सांप सीढ़ी पोस्टर जरिए खेल खेल में वोट देवन रो महत्व बतायो जा रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश में पड़बारी शंका वाला और असुरक्षित स्कूल भवन और कक्षा कक्ष काम नी लेवन रा हुकम दीना है। मुख्य सचिव स्कूल भवन री हिफाजत रे बारा माय आज जयपुर माय राखी जी मीटिंग माय बोल रिया है। वह उच्च शिक्षा विभाग रा एहलकारा ने संस्थान भवन री हिफाजत जुड़ी लगातार निगरानी और जांच करावन सारू कहो। श्री वी श्रीनिवास स्कूला माय पीवन रो साफ पानी मुहैया करावन माथे खास जोर दीनो। मीटिंग में स्कूल शिक्षा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव बतायो कि प्रदेश री 65,032 स्कूलों रा तकनीकी सर्वे में 3,032 जर्जर भवन और 83,032 पड़बारी हालत वाला कक्षा कक्षा री पिछाण करी जी जान काम लेवन माथे रोक लगाती री जी है। श्री यादव बतायो कि आईआईटी जोधपुर और जयपुर रा एमएनआईटी रा जानकारा ने टीम कान्यो सरकारी स्कूल भवन रे स्वतंत्र तकनीकी सुरक्षा जांच करी जा रही है। मलेशिया माय खेली जी लेक्रोज चैंपियनशिप माय भारत री महिला टीम कांसारो तमगो जीतियो है। कुआलालंपुर माय भारत मेजबान मलेशिया ने हरायो। इन पाछे फिलीपींस ने मात देर सिंगापुर ने 10-9 हरार कांसारो तमगो जीतियो। भारत री इन जीत माय उदयपुर और आरएसआर रा जनजाति हलका री बेटियां रो मोटो योगदान रह्यो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आ उपलब्धि हासिल करण सारू भारत री महिला लेक्रोस टीम ने बधाई और शुभकामनावां दीनी है। मारा संदेश माय राज्यपाल कह्यो कि सीमित साधना रे बावजूद राजस्थान री बेटियां बेहतरीन खेल रो दर्शाव कीनो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई उपलब्धि सारू भारत री होशियार खिलाड़ियां री सराहना कीनी है। मारा संदेश माय मुख्यमंत्री कह्यो कि जनजातीय हलका री खिलाड़ी मेहनत और जज्बाओं देश और प्रदेश रो नाम रोशन कीनो है। केंद्र सरकार शक्कर री जमाखोरी और इणु जुड़ी सट्टेबाजी रोकण सारू शक्कर रा भंडारण री हद 4,000 क्विंटल घटार 2,000 क्विंटल कर दीनी है। नुवी हद ई महीनारी 15 तारीख हूँ 30 नवंबर ताई लागू रहवेला। उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रे मुजब नुआ नियमा रे तहत कोई कारोबारी स्टॉक मिलिया पाछे 30 दिनों बत्ता बगत ताई ते हदू बत्ती शक्कर नी राख सकेला। इसा गई सरकार दिसावरों बिना फीस मंगवाई जावन वाली कच्ची चीनी री प्रोसेसिंग और बिक्री री समय सीमा में बदलाव कीनो है। दिसावरों कच्ची शक्कर मंगावन वाला सारू खरीद री तारीख हूँ 2 महीना री मियाद माए इनने सफेद शक्कर बनार देशी बाजार माए बेचनू जरूरी वेला। केंद्र सरकार कांदारा सुरक्षित भंडार हूँ देश रा खास शहरा रा बाजारा माए प्याज री पूर्ति शुरू कर दीनी है। खाद्य मंत्रालय रे मुजब देश माए कांदारा बधता मोल माथे काबू करण सारू कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियां और ट्रकां रे जरिए प्याज री पूर्ति करी जा रही है। मंत्रालय रे मुजब रेलगाड़ियां सा गई ट्रकां हुई करीब 1,000 मीट्रिक टन प्याज बाजारा माए भेजो जा रियो है। सरकार साफ कीनो है कि बफर स्टॉक हूँ प्याज बाजार माए आया पाछे इनरा मोल माए कमी आवन लगी है और आवता दिना ओ और सस्तो फैला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज माए तेजी जगह बना रियो है। वह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT रा 66वां स्थापना दिवस समारोह में बोल रहा है। शिक्षा मंत्री कहो कि तेजी उभेरिया तकनीकी बदलाव रे मुजब किताबा और कोर्स में बदलाव जरूरी है। वह कहो कि इनो विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझण और माने आत्मविश्वास सागे जिम्मेदारियों काम लेवण में मदद मिलेला। आखिर में खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद रा इकोसिस्टम और फंडिंग न खत्म करण री अरज कीनी पानी बचावण और इनरा बेहतर प्रबंधन रवाना माय विचार करण सारू नई दिल्ली माय आज दो दिन रो शिखर सम्मेलन शुरू थियो प्रदेश माय जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवन और कक्षा काम नी लेवण रा हुकम दिया गया और मलेशिया माय भी लेक्रोस चैंपियनशिप माय भारत री महिला टीम कांसा रो तमगो जीतियो टीम माय राजस्थान रा जनजातीय हलकां री 9 खिलाड़ियां रो शानदार प्रदर्शन इसागई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो नमस्कार
6: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनबा वाला सगला हेतालवा ने जका दूर दराज गांव ढाणी रे मायने बैठे हुआ कार्यक्रम सुन रहे है, आप सगला हेतालवा ने घणे मानसू प्रभु दयाल पर मारो राम राम साय। और सागे सागे अदिति बहन ताने भी मोकलो मोकलो राम राम सा।
7: राम राम प्रभु भाई और सुनबाला सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
6: काई हाल चाल अदिति बहन?
7: बहुत बढ़िया हाल चाल, और बिरखा की रुत छे, चौमासो चाल रहो छे, पानी बरस रहो छे, और चारू मेर यहाँ लाग रहो छे कि पोषण ही पोषण अपनी जमीन ने मिल रहो छे।
6: बिल्कुल, पोषण तो देखो अपनी जमीन ने जदी मिले चोखी बिरखा हुए, पण देखो अब खट्टे खट्टे जिया छांटा छिड़को हुए है, और कई जगह जिया छांटा छिड़को नहीं हुए तो अपनी फसल है जी भी बिरखा रे अभाव रे मायने जलवा भी लागण लाग रही है। पण जद पोषण री बात कर रहे हो तो देखो आपा आपनो स्वास्थ्य है चंगो बनायो राखने वास्ते आपने चोखी जी की खुराक है, खान पान रो आपन पूरो ध्यान राखण नो चाहिए
7: जी। और आप बार बात करबा की भी यही छे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1-7 सितंबर तक मनायो जावेलो, और हर चीज के पिछोकड़े कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होवे प्रभु भाई। तो ई राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के पिछोकड़े भी यही बात छुपियोड़ी है कि संतुलित आहार, पोषण स्वास्थ्य और कुपोषण से बचाव के प्रति आपने सब ने जागरूक रहना है।
6: बिल्कुल जागरूक रहना है, देखो आपन अच्छे स्वास्थ्य बना रखनो है, अगर आपनो स्वास्थ्य चोखो रेवलो तो आप कोई भी काम करना बीके मायने आपने अच्छी तरीके सफलता अपन मिल सके है। जब आपनो स्वास्थ्य सागे नहीं है तो आप चाहे अपने कतो ही धन दौलत हुए, चाहे बाकी सारी चीजा हुए, लेकिन आप स्वास्थ्य सही नहीं हुए तो बाकी चीजों को आप लाभ नहीं उठा सका
7: जी। सा स्वास्थ्य नहीं सबसे मोटो धन भी कहो गयो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपकी बात सु सहमत छू। और सागे ही अगर आप बात करा आपनी माटी की और आपने माटी की पोषण की, तो भी आपने बीच में जो विषय विशेषज्ञ छे
6: बिल्कुल सही थे, मैं समझ रही हूँ था विचारों के भाई आप अपने स्वास्थ्य की बात करा भी, देखो अपने माटी है, अपनी यहाँ धरती माता है, इको स्वास्थ्य अगर चोखो रे लो तो देखो फसल चोखी मिल पाओली, और फसल चोखी मिल पाओली तो आपनों जो को किसान को जीवन स्तर है वो सीधो सीधो विषय जुड़ो है। तो आपने विशेष विशेषज्ञ आपने सागे स्टूडियो में मौजूद है सरिता चौधरी जी, तो बासू बातड़ी थे करो देगी आप और किसान भाइयों तक पूर्ति करवा।
7: श्रोताओं आज हमारे सागे जानकारी देबा खातिर उपस्थित छे सरिता चौधरी जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान राजकीय कृषि महाविद्यालय मौजमाबाद जयपुर सु आप पधार्या, और आज आप आसू जानकारी लेवाला मृदा की सेहत, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान पे। पहली करा आपको स्वागत, राम राम सरिता जी।
8: राम राम किसान भाइयों।
7: सरिता जी सबसे पहली प्रश्न आ ही रहवेलो कि मृदा की सेहत या फिर आपा बोला कि मृदा को स्वास्थ्य छे कई।

0: स्वस्थ मिट्टी वो है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ, उचित पीएच और संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस व सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हो और उसके साथ साथ ही सूक्ष्म जीव भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो। और मिट्टी की संरचना के बारे में हम बात करते हैं तो वो क्या है? मिट्टी की संरचना वह जिसमें पानी और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके, लेकिन लगातार एक ही फसल उगाने से और आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग करने से, फसल अवशेषों का जलाने से, जिससे जैविक पदार्थों की कमी हो जाती है और मृदा की गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो जाती है। मृदा का स्वास्थ्य वही है जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व हो और सूक्ष्म जीव भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो।
1: जी, बहुत ही बेहतर तरीके से सरल और सहज शब्द में आप माटी को स्वास्थ्य छह काई में समझाया। सागे ही आपसु या भी जानबो चावला की जो माटी को स्वास्थ्य छे वे फसल उत्पादन सु किण भात को एक दूसरा सु संबंधित छे, कहीं एक दूसरा ने प्रभावित भी करे छे, वे बताओ सा।
0: जैसे जैसे हम फसल उत्पादन करते हैं उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी में क्या चाहिए? पोषक तत्व। उसी प्रकार जैसे हम पोषक तत्व हम सप्लाई करेंगे उसी प्रकार से हमारे को प्रोडक्शन होगा। तो फसल उत्पादन के लिए हमारे को उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सभी उपलब्ध है, तो ये क्या करते हैं, फसलों में, पौधों में उनके विभिन्न कार्य होते हैं, तो ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए इनकी जरूरत होती है। तो इनको अगर हम संतुलित मात्रा में देंगे तो क्या होगा, अच्छे से पौधे उनको अपटेक कर पाएंगे और इस प्रकार हमारा फसल प्रोडक्शन भी बढ़ सकेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आप ये भी बताओ कि अगर भी माटी का स्वास्थ्य ने बेहतर बनावो चाहवा तो कहीं कर्सा बाहर बना बना सके छे?
0: हाँ मैडम, जरूर हम बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के द्वारा हम इसको अच्छे से उपलब्ध बना सकते हैं। इस प्रकार जैसे हम ऑर्गेनिक सोर्स, कार्बनिक स्रोतों से, उर्वरकों से और वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सबको हम सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा कि अच्छे से हम अप्लाई करेंगे तो पौधे सब चीजों को संतुलित मात्रा में उपयोग कर पाएंगे, तो जिससे क्या होगा पौधे अच्छा प्रोडक्शन देंगे।
1: जी सर। करसा भाई बहना, आपने ऊपर छे कि माटी को स्वास्थ्य आपा कहीं बेहतर बनावा, सागे ही अगर संतुलित पोषण की बात करा तो संतुलित पोषण देखो सबने चाहिए, अगर मानव छे तो मानव ने भी चाहिए, अपना पशु छे वाने भी चाहिए, सागे ही सागे अपनी माटी छे माने भी संतुलित पोषण चाहिए। तो संतुलित पोषण किन भात को आपा राखा जिससे समृद्ध फसल उत्पादन आपने मिल सके?
0: मृदा स्वास्थ्य को हम बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ सबसे पहले हमारे को मृदा की जांच की आवश्यकता होगी। मृदा की जांच करना होगा, मृदा जांच के बाद हम उसमें संतुलित पोषण उपलब्ध करवाएंगे, फसल विविधीकरण को हम अपनाएंगे, हम उसमें कार्बनिक स्रोतों को अप्लाई करेंगे। इस प्रकार हम मृदा स्वास्थ्य को हम बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा जांच के बारे में। मृदा जांच से हमारे को पता लगेगा कि मृदा में कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है, कौन से की कमी है। अगर हमारे को पता लग जाती है मृदा में कि ये पोषक तत्व कम है तो हम क्या करेंगे, उसको ही हम अप्लाई करेंगे। जैसे ऐसा मानते हैं कि जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो हम यूरिया अप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन अप्लाई कर देंगे, उसके बाद फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस अप्लाई कर देंगे, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम सप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे को जिस पोषक तत्व की जरूरत है हम वो पोषक तत्व उसके अकॉर्डिंग ही हम सप्लाई कर देंगे और फसल उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम जैविक स्रोतों को अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि जैविक स्रोत अप्लाई करेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव है, उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी और जो भी हम पोषक तत्व सप्लाई करते हैं वो पौधे ऐसे तो अपटेक नहीं कर पाते, लेकिन उनको उनकी सरल अवस्था में सूक्ष्म जीव उसको उपलब्ध करवा देते हैं। इस प्रकार पौधे जो भी मिट्टी में उपलब्ध अवस्था में है, अनुपलब्ध अवस्था में जो पोषक तत्व पड़े हैं उनको पौधों को सप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार हम मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक ये उपयोग कर सकते। दूसरा, फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे फसल विविधीकरण क्या है, फसल विविधीकरण में हम गेहूं उगाते हैं, गेहूं के बाद हम दलहनी फसलें उगाते हैं, तो क्या होगा गेहूं जो ऊपर की जमीन है, ऊपर की जो लेयर है मृदा की, उसमें से पोषक तत्वों को अपटेक कर लेंगे। और दूसरा,

0: और जिससे क्या होगा, उर्वरकों की लागत कम होगी। उर्वरकों की लागत कम होगी तो फसल उत्पादन की लागत कम होगी और किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। जैसे हम बात करते हैं दलहनी फसलों में, फसल विविधीकरण में दलहनी फसलें क्या करती है, उनमें हम राइजोबियम जीवाणु, फॉस्फरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड पोटेशियम घुलनशील जीवाणु, अगर हम इनको उपयोग करते हैं तो जो भी मृदा में जो अनुपलब्ध अवस्था में जो पोटेशियम फॉस्फोरस पड़ा हुआ है उसको ये सूक्ष्म जीव उनको घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं, जिससे क्या होगा जो भी हमारे को उर्वरक की लागत होगी वो कम हो जाएगी, दूसरी जो किसान की फसल उत्पादन की लागत वो कम हो जाएगी, जिससे फसल उत्पादन हम बोल सकते हैं कि एक तरह से समृद्ध किसान तो वही आय का एक जरिया बन जाएगा। दूसरी चीज फसल विविधीकरण के बाद में हम बात करते हैं कि और किस प्रकार ये बेनिफिशियल है। हम फसल विविधीकरण में जो भी उर्वरक जो भी हम अप्लाई करते हैं, जैसे दलहनी फसलें नाइट्रोजन का उपयोग खुद तो करते हैं लेकिन जो अगली फसल होगी उसमें भी वो उस नाइट्रोजन जो भी गांठों में जो नाइट्रोजन बनी है वो पड़ी रहेगी और अगली फसल में वो काम आ सकेगी। इसी में हम बात करते हैं मृदा संरक्षण, जैसे मृदा कटाव जो कि एक उर्वरक भूमि है उसका एक क्षरण कर देती है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं कि जैसे हम जो भी फैलने वाली फसलें हैं जैसे दलहनी फसलें, दलहनी फसलों को उगाने से जो भी मृदा हवा के द्वारा मृदा क्षरण होगा उसको हम बचा सकते हैं, और पानी के कटाव द्वारा जो भी शुरू में जो पानी की बरसात की बूंदें पड़ती है उससे जो क्षरण होता है उसको भी हम उससे बचा सकते हैं। दूसरा जो भी नाइट्रोजन का वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो नाइट्रोजन का लॉस होता है उसको भी हम उसके थ्रू बचा सकते हैं। और हम बात करते हैं इसमें कि जो भी गेहूं के साथ वाली क्रॉप्स है जो भी फसलें हैं उनमें हम जो यूरिया अप्लाई करते हैं उसका क्या होता है कि ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, इसी प्रकार हमारे को ये संतुलित मात्रा में हमारे को सप्लाई करना चाहिए। संतुलित मात्रा में सप्लाई करेंगे तो सारे जो भी किसान की लागत है वो, और इसमें एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि कब हमारे को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने हैं, किस टाइम सही वक्त पे सही विधि से और सही समय पर हम इसको सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी हम उर्वरक और जो भी हम स्रोत हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगा उससे जो सही मात्रा में उसको अपटेक कर पाएगा और इससे उर्वरक की दक्षता बढ़ पाएगी और लागत में कमी आएगी।
1: श्रोताओं आपां जानकारी ले रहा हां मृदा की सेहत, स्वस्थ मृदा स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान, और आपां ने जानकारी दे रहा है डॉक्टर सरिता चौधरी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान राजकीय कृषि महाविद्यालय मोजमाबाद जयपुर सुहा पधार्या है। डॉक्टर साहब अगलो प्रश्न है कि संतुलित पोषण के ताई किण भात का स्रोतों का उपयोग आपने करना चाहिए कर्जा बाहर बनाना, वह बताओ सर।
0: जी किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगी कि संतुलित पोषण में हम कार्बनिक स्रोतों, उर्वरकों, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, हरी खाद, इन सभी का हम एक साथ उपयोग करेंगे। जैसे हम बात करते हैं फार्मयार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या होगा, इसमें कार्बनिक स्रोत ज्यादा होंगे, कार्बनिक स्रोत ज्यादा होंगे तो क्या होगा उसमें मृदा की जो संरचना जो भौतिक अवस्था है मृदा की उसको भी सुधार में सहायता मिलेगी। भौतिक जो संरचना उस पर जनरली कम ही ध्यान जाता है, इससे क्या होगा कि जो पानी हवा का आवागमन है वो भी बाधित नहीं होगा। अगर हमारी भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था और जैविक अवस्था तीनों अवस्था मृदा की अगर सही है तो मृदा स्वास्थ्य अपने आप ही बेहतर होगा। और संतुलित पोषण में हम बात करेंगे तो ये सभी जो मैंने स्रोत बताए उनका हम सही वक्त पे सही विधि से और सही टाइम पे हम उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा जो भी उर्वरक हम अप्लाई करें हैं, जो भी स्रोत हम अप्लाई करें हैं उनको प्लांट अच्छे से उपलब्ध कर पाएगा तो हमारे जो नाइट्रोजन का क्षरण है जो लॉस हो रहा है वो नाइट्रोजन बचेगा, जो लीचिंग के थ्रू जो लॉस हो रहा है वो बच जाएगा, जो भी ताप की थ्रू जो नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है वो बच जाएगा। जैसे वानस्पतिक वृद्धि के समय नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है तो हम उसी टाइम पे नाइट्रोजन का हम अप्लाई करेंगे तो उसके साथ ही हम उसके अलग अलग अवस्था में स्प्लिट डोजेस थोड़ी थोड़ी अवस्था में उसको हम सप्लाई करेंगे, जिससे जितना जरूरत होगी प्लांट को उतना ही वो मृदा से ले पाएगा।
1: जी सर, अगर बात करा सरिता जी मृदा स्वास्थ्य

0: का प्रबंधन की तो वह अपा किड़ भांति कर सका, जिसे की करसा बाहर बना की आय में भी वृद्धि होवे और अपना करसा बाहर बना को आर्थिक स्तर में भी वृद्धि होवे।
1: जैसे मैं इसमें बताना चाहूंगी आपको किसान भाइयों, जैसे हमारे को पता करना होगा कि मृदा में कौन से पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और कौन से पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित है, मृदा की अवस्था कैसी है, मृदा की कंडीशन कैसी है। हमारे को ये सब चीजें जानने के बाद ही हम बता पाएंगे कि मृदा में कौन से पोषक तत्व उचित है और कौन से कम है। अगर जो उचित है तो उनको हम कैसे पौधों को हम उपलब्ध करवा सकते हैं वैसे, और दूसरी चीज जो कम है उनको हम सप्लाई कर सके। और हम मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमारे को मृदा के, जैसे हमारा जो स्वास्थ्य है, जैसे हम चिकित्सक के पास जाके हम चेक करवाते और पता करते हैं कि हमारे कौन सी बीमारी है, उसी प्रकार हम मृदा के स्वास्थ्य की भी हम जांच करने के बाद बताएंगे कि मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसी के अनुसार उसको हम ट्रीटमेंट देंगे। जैसे हम मान सकते हैं फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व अप्लाई करना और मृदा में जो सूक्ष्म जीव है, जो लाभकारी जीव है, वो क्या करेंगे, जो नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, उनको उपलब्ध मात्रा में फसलों को दे पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन, ये तो मुख्य पोषक तत्व हो गए, हम इनको तो अप्लाई कर दिए क्योंकि हमारे को पता है यूरिया देना है, डीएपी देना है, एमओपी देना, ये सब हम अप्लाई कर देते। सूक्ष्म पोषक तत्वों की ओर ध्यान नहीं जाता, सूक्ष्म पोषक तत्व क्योंकि ये भी जिस प्रकार 17 आवश्यक पोषक तत्व है, उसी प्रकार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो भी द्वितीय पोषक तत्व है, इनको हम उतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही हमारे को सूक्ष्म पोषक तत्वों को देना चाहिए क्योंकि ये भी फसलों में वही काम करते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व करते हैं, तो हम इनको नेग्लेक्ट नहीं करें। इसके लिए हमारे को जैसे जिंक, जो हम गेहूं में कभी कभी होता है कि गेहूं में दाने नहीं बन पाते, प्राकण नहीं हो पाता, तो उनमें क्या होगा कि बोरोन और जिंक की कमी होगी, वो हम जान नहीं पाते। किसान भाइयों, इसको जानने के लिए हमारे को मृदा की जांच करवानी चाहिए, मृदा की जांच के बाद उसी के अनुसार हमारे को उसमें कौन से तत्वों की कमी है वो देना चाहिए, कौन से सूक्ष्म जीव हमारे को देने चाहिए उनको हम अप्लाई करना चाहिए। जिस प्रकार हम बात करते हैं सूक्ष्म तत्व जो पॉलिनेशन, परागण और दाना बनने, इन सब में योगदान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे को ये पोषक तत्व सही टाइम पे और सही समय पर हमारे को सप्लाई करना चाहिए, जिससे क्या होगा किसान की आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि मान लो नत्रजन हमने अप्लाई कर दी, वानस्पतिक वृद्धि हो गई, लेकिन क्या होगा जब बोरोन की कमी हो गई तो उसमें परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो दाना नहीं बनेगा, तो हमारे को वानस्पतिक वृद्धि तो मिल गई, हमारे को चारा तो मिल गया, लेकिन हमारे को दाना नहीं मिला, हमारे किसानों को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, जिससे क्या होगा किसान की आय में कमी आएगी। तो हमारे को क्या करना है, आय में वृद्धि करनी है, तो हमारे को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है जो, और अगर प्रयोगशाला आसपास नहीं है तो कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में भी हम मृदा की जांच करवा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे को मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहिए, और वहां पे हम परीक्षण भी ले सकते हैं कि हमारी मृदा को हम कैसे सुधार सकते हैं। मृदा का स्वास्थ्य अगर खराब हो गया, जैसे उसमें लवणों की मात्रा बढ़ गई, तो हम क्या करें, कैसे उसको सही करें, उसके लिए भी अलग अलग स्त्रोत हम अप्लाई करेंगे। जैसे मृदा में लवणों की मात्रा बढ़ गई तो हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे और हम पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे सोडिक सॉइल हो गई जिसमें सोडियम लवण ज्यादा है, तो हम उसमें जिप्सम की सप्लाई करेंगे जिससे जो बैलेंस है पोषक तत्वों का वो हो जाएगा, और इस प्रकार हम हमारी मृदा का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मृदा में अगर ज्यादा मात्रा में पानी है तो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन का लॉस कर देगा, तो हमारे को उसका भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम मृदा में कितना पानी भरने दे, कितना किस टाइम पे हम पानी दे, जिससे पानी की बचत होगी, क्योंकि ये भी तो एक लागत ही है, क्योंकि अगर लागत ज्यादा होगी तो नुकसान होगा। इस प्रकार हमारे को लागत कम से कम करने पे ध्यान देना चाहिए और सही टाइम पर, सही समय हमारे को सही विधि से हमारे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने चाहिए। और इस प्रकार हम हमारी मृदा का प्रबंध कर सकते हैं।
0: जी सरिता जी, चलता चलता आप कर्जा बाहर बढ़ाने कोई संदेश देना चाहो तो बताओ सा।
1: हाँ जरूर, मेरा संदेश है स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल, समृद्ध किसान और समृद्ध भारत।
0: श्रोताओं अब आप जानकारी लिया डॉक्टर सरिता चौधरी जी से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान राजकीय कृषि महाविद्यालय मौजमाबाद जयपुर से आप पधारे और इतनी बढ़िया जानकारी मृदा की सेहत, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान पर आप इतनी बढ़िया जानकारी दिया, इसके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सर।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो भाई लोगों, आभार, थोड़ी देर पहले जानकारी आप तक पहुंचती हुई, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान, ये विषय पर जानकारी अपन सरिता चौधरी जी दे रहा और बातचीत अपने अदिति बहन जी कर रहा, तो बहुत ही चौकी जानकारी था तक पहुंचती हुई। अब देखो अपना जगह पावना पधारिया बन है और हमारे सागे अदिति बहन अन दुनिया ने मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद और धन्यवाद स्वरूप। अब बादवारों मीनो चलन लाग रहे हैं, सिंजर और टेम है, तो एक मिट्टी सी लोक रचना बाबा जी आप लोगों तक पुगती हुई है, सा सुनो।

0: इमीट हसा लोक भजन के साग ही कार्यक्रम को बखत पूरो हुयो तो देव अदिति ने
1: और प्रभु दल ना आ गया
0: चाला और करा
1: राम राम सा। प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम के
1: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम में आकाशवाणी जयपुर से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM पर 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
3: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
3: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
3: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकनाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
3: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकनाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
3: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए। वहाँ की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
2: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गाँव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
3: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
2: जी।
3: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
2: जी।
3: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
2: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहाँ आ पहुँची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
3: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
2: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
3: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
2: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
3: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गाँव के लोग नदी की ओर आने लगे।
2: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीने उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
3: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
2: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
3: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओं, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
3: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माय नेम।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
4: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
5: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
6: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
4: The fly went near the cow and asked,
5: Dear cow, do you know my name?
7: No.
5: I don't know. You may ask the grass I ate.
4: The fly went to the grass and asked,
5: Dear grass, do you know my name?
8: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
4: The fly asked a leaf fallen on the grass.
8: Dear leaf, do you know my name?
4: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.
5: Oh, my name is Fly. My name is Fly.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की परती।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
6: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
5: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
6: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
7: Stephen, happy birthday to you!
8: Happy birthday to you, Stephen!
7: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you,
9: Thomas. Congratulations!
7: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
10: Oh, fine, fine!
7: Thanks for coming in. Please come in. Please.
8: Oh, sure. Yes, yes. Yay. Why not? Why not?
10: Come, come, yay!
8: Come.
10: John, please come here!
8: Oh, sure, sure. Yay.
7: Join us for a drink, please.
5: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
9: Oh.

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओ

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
4: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
3: ग्रेट। धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष में

0: अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
2: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी नागौर का ये चिरवी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं एल्बम सॉन्ग्स। यह है पहला गाना एल्बम हमराही से।

अभी आपने सुना ये गाना एल्बम सॉन्ग में आतिफ असलम की आवाज़ में। लीजिए सुनिए ये अगली पेशकश।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में अभी आपने सुना ये मेरे हमनवा एल्बम का गाना। लीजिए एल्बम सॉन्ग में ये अगला गाना सुनिए, आवाज़ें हैं गौरव चटर्जी और मेघा बाली की।

सलमान अली के गाए इसी गीत के साथ एल्बम सॉन्ग अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का यह है चिरमी चैनल FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर। यह पहली प्रस्तुति आवाज़ बुंदुखा की है।

0: गाजी खां के गाए इसी लोकगीत के साथ घूमर अब यहीं खत्म होता है। आकाशवाणी नागौर का यह है चिरमी चैनल। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं दिल्ली से समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
4: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
6: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
7: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
8: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
9: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
8: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: FM 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। यह पहली गजल आवाज गुलाम अली की है।

पंकज उधास की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत अब यहीं खत्म होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

अब आपको सुनवाते हैं यशुदास और सुलक्षणा पंडित का गाया सावन को आने दो फिल्म का गीत। इस गीत के बोल माया गोविंद के हैं और संगीत है राजकमल का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और उषा तिमोती की आवाज़ में ये गीत बोल कल्याण जी आनंद, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं, जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदिवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।